वंदे मातरम, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो दोस्त सैकर चैटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आप सबका स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन सोमवार, अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की जुलाई माह की 13 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 22 तारीख। दोस्तों, अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे

0: दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। जुड़ते हैं कार्यक्रम खेती की बातें से। आज का विषय है मीठे पानी में झींगा पालन कैसे करें। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
1: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें झींगा पालन की। झींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। किसान भाइयों, भारत में मछली पालन काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। ऐसे में झींगा मछली पालन के व्यवसाय के प्रति किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। झींगा पालन को आम तौर पर तटीय क्षेत्रों में पालना सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन अब तकनीकी सहायता के चलते किसान खेतों में बनाए गए तालाबों में भी झींगा पालन कर सकते हैं। झींगा मछली पालन से किसान एक हेक्टेयर क्षेत्र में बने तालाब से 4 से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, झींगा का पालन अकेले अथवा अन्य मछलियों जैसे रेहू कतला के साथ किया जा सकता है। चूंकि झींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, अतः इसके तालाब में कॉमन कार्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। मटियाही या दोमट मिट्टी वाले 1 एकड़ या इससे छोटे तालाब झींगा पालने के लिए उपयुक्त है। ग्रामीण भाइयों, तालाब की तैयारी की अगर हम बात करें तो झींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा लेनी चाहिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े नहीं रहें। तत्पश्चात मिश्रित मत्स्य पालन के पूर्व जिस प्रकार तालाब की तैयारी की जाती है, उसी प्रकार से तालाब की तैयारी कर लेनी चाहिए। उक्त मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर वगैरह तालाब में डालना चाहिए। ग्रामीण भाइयों, मत्स्य बीज संचयन की केवल झींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है। झींगा बीज को तालाब में छोड़ने से पहले इसके पैकेट को जिस तालाब में संचयन करना है उसमें कुछ देर रख दिया जाता है, ताकि पैकेट के पानी और तालाब के पानी का तापमान एक हो जाए। उसके बाद ही संचयन हेतु बीज पानी में छोड़ा जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, जिस जगह पर झींगा बीज को संचयन हेतु छोड़ा जाता है, उसी स्थान पर प्रथम 15 दिनों तक उन्हें भोजन के रूप में सूजी, मैदा, अंडा को एक साथ मिलाकर गोला बनाकर दिया जाता है। उक्त भोजन सुबह और शाम के समय एक ही स्थान पर प्रतिदिन दिया जाता है। 15 दिनों के बाद नवजात झींगा मछली सामान्यतः अन्य मछलियों को दिया जाता है, वही इनका भी भोजन होता है। झींगा पालन में इन्हें ऊपर से पूरक आहार का दिया जाना अति आवश्यक है, था भोजन के अभाव में ये आसपास में ही कमजोर झींगा को अपना भोजन बना लेती हैं। झींगा की वृद्धि की जांच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जांच करनी चाहिए। जब झींगा पूर्ण रूप से बड़ा हो जाए तो समय समय पर इसकी निकासी पर बेचा जा सकता है। बीच में बड़े झींगा को निकालते रहना चाहिए, जिससे छोटे झींगा को बढ़ाने का अवसर मिलता रहे। यह प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। ग्रामीण भाइयों, खुले बाजार में इसका मूल्य इसके वजन के अनुसार लगभग 300 से 400 रुपए प्रति किलो प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, झींगा मछली औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। थायराइड और झींगा रोगियों के लिए झींगा बहुत ही फायदेमंद होता है। झींगा मछली विटामिन डी से भरपूर होने के कारण इसका उपयोग त्वचा संबंधी रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। वास्तव में किसान भाइयों, झींगा पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। कार्यक्रम में ये हुई बातें मीठे पानी में झींगा पालन की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था मीठे पानी में झींगा पालन। आप सुन रहे थे रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा को। आइए दोस्तों, इसी के साथ जुड़ते हैं रामचरित मानस गान से और सुनते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 205।
2: एपिसोड नंबर 205, 205।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम रामचरितमानस गान। आपने सुना रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 205। दोस्तों ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना से और सुनते हैं तृप्ति शाकिया के गाए ये खूबसूरत सा भक्ति गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना। ये हमारा भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार सुनते हैं तृप्ति शाकिया को।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना। ये भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम है और आप सुन रहे हैं तृप्ति शाक्या को। आइए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिर से एक बार सुनते हैं तृप्ति शाक्या को।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप आराधना के तहत सुन रहे थे तृप्ति शाकिया के गाए भक्ति संगीत। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम से और सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है हृदय रोग कारण एवं उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर अजय कुमार और इनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: आजकल की जिंदगी पर हम थोड़ी सी नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी भी तरह से किसी भी बीमारी से वो ग्रसित दिखता है। हमारा जीवन शैली भी काफ़ी अव्यवस्थित हो गया है, हमारे खान पान का तरीका बदल गया है और हमारे उठने बैठने के तरीके में भी बहुत ही बदलाव दिखता है। तो ऐसे अव्यवस्थित जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और आपको इसका पता भी नहीं लगता है। एक ऐसी ही बीमारी है हृदय रोग, या जिसे हम दिल की बीमारी कहते हैं, उससे आप पीड़ित हो जाते हैं और फिर समस्याएँ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि हृदय रोग होने का कारण क्या है और इसका होम्योपैथिक पद्धति द्वारा आप किस प्रकार उपचार कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार जी स्वागत है। सबसे पहले हम जानें कि किस प्रकार हमारा दिल धड़कता है।
2: यह हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट हम लोग कहते हैं। हमारे शरीर में ये रक्त संचार इसके थ्रू होता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये हार्ट काम कैसे करता है। ये हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको शरीर से वापस लंग्स तक भेजता है। लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है और उस ऑक्सीजनेशन के बाद में ये फिर दोबारा हार्ट पे जाता है और हार्ट में जाने के बाद ये फिर पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पहुँचाता है।
1: तो जो प्रमुख बीमारी है दिल की, वो कौन कौन सी है, लक्षण क्या है इसके, ताकि समय रहते हम इसका उपचार कर सके।
2: आज के समय में हार्ट अटैक पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कॉज है डेथ का। हर 5 में से 1 मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही है, जो एक गंभीर विषय आज के लिए बना पड़ा है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, वैसे ही हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है काम करने के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कोरोनरी आर्टरी उसे प्रोवाइड करता है। इसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट काम करना बंद कर देता है या पार्शियली हार्ट काम करने बंद कर देता है। इसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं या फिर इस्केमिक आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसमें जैसे लक्षण में आएंगे चेस्ट पेन, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशंस, सिनकोप्स, पेडल एडिमा, इस तरह के लक्षण आएंगे। थोड़ा सा इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेस्ट पेन, आम धारणा बनी हुई है कि ये जो हार्ट अटैक में जो दर्द होता है वो लेफ़्ट साइडेड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लेफ्ट साइडेड ना होके ये सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। ये डिफ्यूज़ इन नेचर होता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह में नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरी छाती में ये दर्द भारीपन हो रहा है। इसका दर्द किस तरह का होता है, इसमें भारी वजन, ऐसा लगता है कि छाती पे कोई भारी वजन रखा हुआ है या फिर कोई बेल्ट से ज़ोर से कस दिया है छाती को, इस तरह का पेन को हम लोग एंजाइना भी बोलते हैं। ये कब होता है, ये तब होता है जब हम लोग कोई एग्जर्शन करते हैं, यानी जब हम लोग कोई मेहनत वाला काम करते हैं।
1: तनाव से हम जब गुजरते हैं तो ये लक्षण भी दिखाई पड़ने लग जाता है।
2: तनाव से भी हम लोग गुजरते हैं, एग्जर्शन मतलब जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ा देर लंबा चलते हैं या कोई भारी वजन उठाते हैं, और इसमें इस तरह का पेन होना चालू हो जाता है। और वो भी कुछ देर के लिए होता है, जो कि हम लोग रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने के बाद में ये आराम आ जाता है। इस तरह का दर्द को हम लोग एंजाइना बोलते हैं। ये चेस्ट पेन है, ये कार्डियक ओरिजिन का होता है। ये चेस्ट पेन 2-3 केसेस में नहीं होता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उसमें ये चेस्ट पेन नहीं होता। जो पेशेंट बुज़ुर्ग होते हैं, काफ़ी उम्र वाले होते हैं, उनको ये नहीं होता। और ये फीमेल पेशेंट को भी जनरली ये चेस्ट पेन नहीं होता है। कई बार लोग सीने में दर्द का भी बताते हैं, जो कि लोकल होता है, एक छोटे से जगह पे होता है। बोलते हैं कि चुभन जैसा दर्द हुआ। ये एक्चुअली में हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, हार्ट अटैक का कोई ये संबंध नहीं है इससे। एक लक्षण हुआ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसे हम कैसे समझेंगे कि ये कार्डियक ओरिजिन का है? जब सोने के समय 2 से 3 मिनट तक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम फूलने लगता है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए दम फूलता है। सेम इसी तरह से पाल्पिटेशंस में भी होता है, दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है लेटते समय या फिर किसी तरह का हेवी काम करते समय, बहुत पसीना भी आने लगता है, स्वेटिंग भी आने लगता है। तो ये सारे लक्षण मिलके सजेस्ट करते हैं कि ये कार्डियक ओरिजिन का है, यानी ये एंजाइना हार्ट अटैक का संबंधित है। इसके लिए हम लोग को तुरंत जाके इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: इस तरह के जो लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप चिकित्सक की सलाह लें। और डॉक्टर साहब, हम सावधानियां क्या रखें और खान पान में हम किन किन चीज़ों से दूरियां बनाएं ताकि ये बीमारी नहीं हो और हम स्वस्थ रहें?
2: इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देता है, ये जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई शुगर है, जो बहुत मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ओवरवेट है, या जेनेटिक्स यानी जीन्स में ही हार्ट की गड़बड़ी आई हुई है, ये उन लोगों को काफ़ी तकलीफ देता है। और इसमें हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसमें हम लोग जो कंट्रोल करते हैं वो लाइफस्टाइल में सुधार करने से है, यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनसे ये आग्रह किया जाता है कि अब आप उसको स्मोकिंग ना करें। तो जो ओवरवेट होते हैं उनको प्रॉपर एक्सरसाइज, वज़न कम करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। डाइट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाइबर्स हमारे खाने में ज़्यादा हो उसका हम लोग प्रयोग करें, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में ज़्यादा हो उसका प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जैसे फल, जैसे सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अंगूर में होता है, काला वाला अंगूर में होता है, अमरूद में होता है, तो इस तरह के फलों का प्रयोग करें, जूस पिएं, फाइबर्स ज़्यादा खाएं, जैसे अब सेब खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार के ना खाएं, छिलका सहित खाएं, इससे फाइबर्स भी हमारे शरीर को मिलेगा जो कि हार्ट को हेल्प करेगा। ओट्स, जिसे हम लोग हिंदी में जई बोलते हैं, जई का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर हम लोग चाय पीते हैं तो ग्रीन टी पिएं, और अर्जुन का एक छाल आता है, अर्जुन के छाल को उबाल के उसको भी चाय जैसा हम लोग पी सकते हैं। तो ये तो सावधानी, ये जो चीज़ है कि हम लोग क्या अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, क्या अच्छे खाने खा सकते हैं, हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। अब हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इसको दूर रखने के लिए, या जो भी पेशेंट जिनका हार्ट कमज़ोर है वो कोशिश करें कि एनिमल फैट ना खाएं, एनिमल मीट जैसे मटन हुआ, चिकन हुआ, फिश हुआ, एग योल्क हुआ, यानी अंडे के पीला वाला भाग, उसको ना खाएं। अब जैसे दूध भी अगर पीते हैं तो वो दूध में स्किम्ड मिल्क तो ही पिए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी चर्बी रहित दूध अगर हम लोग पिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में भी तेल होता है, तो ये तेल भी दिक्कत है। तो इस ड्राई फ्रूट्स को हम लोग अगर रात में छोड़ दें और सुबह उठ के खाएं, इसका तेल भी हम लोग को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लास्टली, तेल, आजकल हम लोग तेल बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिए हैं, हर दिन के हर आहार में हम लोग का खाने में तेल होता है, तो इसको जितना कम से कम किया जा सके, तला भुना ऑयली फ्राइड फूड हम लोग ना खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा बात। इसको हम लोग होम्योपैथिक उपचार किस तरह से कर सकते हैं, तो 2-3 दवाइयाँ हैं जो कि अगर आपका हार्ट कमज़ोर है, अगर आपको पता है कि आपका हार्ट कमज़ोर है या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया हुआ है, तो 2-3 दवा हैं जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के वॉल्व्स को, हार्ट के सर्कुलेशन को यानी वेसल्स को भी डायलेट करके, तो ये रखता है। जैसे कि अर्जुना है, ये अर्जुना आयुर्वेदा में भी होता है, ये होम्योपैथी में भी होता है। ये अर्जुना, एक अर्जुन का पेड़ होता है, उसका छाल को उबाल के पीने के लिए तो मैं पहले भी एडवाइस किया था। यही चीज़ हमारे होम्योपैथी में भी टिंचर फॉर्म में होता है। इसका डोज हम लोग लेते हैं 20 बूंद 3 बार 1/4 कप पानी के साथ। दूसरी दवा है कैक्टस, ये भी हार्ट की टॉनिक ही है और हार्ट का फंक्शन को ठीक करता है। ऐसे 2-3 और दवाइयाँ हैं जैसे कॉन्वोलेरिया, स्ट्रोफेंथस, कैम्फोरा और क्रैटिगस।
1: तो ये दवाइयाँ व्यक्ति स्वतः ही ले सकता है या चिकित्सक की सलाह से ले, जैसे अर्जुन की बात आपने करी?
2: जी नहीं, इसमें चिकित्सक की सलाह, होम्योपैथी में चिकित्सक की सलाह ज़रूरी होती है। उसमें ये ओरिजिन भी हम लोग देखते हैं। होम्योपैथी में हम लोग बीमारी को नहीं देखते हैं, बीमार को देखते हैं। पहले हम लोग उसकी सारी फिजिकल, मेंटल, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, क्रेविंग, एवर्जन्स, ये सारे चीज़ देख के उससे मैच करती हुई दवाइयाँ देते हैं, और प्लस एड ऑन में इस तरह की भी दवाइयाँ देते हैं, जैसे अर्जुना हुआ, कैक्टस हुआ, क्रेटिगस हुआ।
1: अंत में क्या सलाह देंगे कि आप रोज़ सैर करें, थोड़ा सा आप फिजिकल वर्क भी करें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें?
2: मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि खाने में तेल का मात्रा कम रखें, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे सुबह उठ के सैर करना, स्मोकिंग, स्पेशली स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहना, यही एडवाइस करूँगा मैं।
1: तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से आप यदि दूरियाँ बनाते हैं, तला भुना आप नहीं खाते हैं और फाइबर का अधिक से अधिक आप सेवन करते हैं, तमाम बुराइयों से आप दूरियाँ बनाते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके परिवार भी स्वस्थ रहेगा और पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। बड़ी अच्छी आज चर्चा हुई डॉक्टर अजय कुमार, आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा।
0: आइए दोस्तों, अब दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुनते हैं समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अन्तरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तन्त्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखंडतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई मासस्य षड्विंशे दिनांके

0: आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1 शततमो भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800111700 इति माध्यमेन अस्य कार्यक्रमस्य कृते स्वकीय परामर्शान् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। जनाः तावत् नरेन्द्र मोदी एप इत्यस्य अथ च MyGov इति मुक्त मञ्चस्य अन्तर्जालीय माध्यमेन च स्वकीय परामर्शान् दातुं शक्नुवन्ति। अस्य आगामिनः भागस्य कृते परामर्शाः अस्य मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC इत्यस्य अमृत महोत्सवावसरे नूतनस्य शाक उपविपणन केन्द्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सहकारिता मन्त्रालयानुसारम् अस्मिन् कार्यक्रमे श्रीशाहः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानान्तर्गतं पादपारोपणं विधास्यति। सहैव APMC संस्थायाः अमृत महोत्सवस्य संस्मरणाय संकलितां एकां स्मारक पुस्तिकां विमोचयिष्यति। अत्रावधौ श्रीशाहः दहेगाम APMC परिषदः सदस्यैः सहापि वैचारिक विमर्शं साधयिष्यति। गतदिने ओमान तटे भारतीय नाविक युक्ते GFS गैलेक्सी इत्याख्ये वाणिज्यिक पोते आक्रमणात् परं नवदिल्ल्या पश्चिमेशिया क्षेत्रे उत्पातस्य शमनाय स्वकीयं आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्र निन्दां कुर्वता विदेश मन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु 11 भारतीय नागरिकेषु 10 नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत्सु रक्षाकार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारिभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे।

सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले फाइनल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। इन तीनों परीक्षणों से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वो डूबेगा या उल्टेगा नहीं। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में लगी आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। 60 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ देर पहले आप जुड़े थे हमारे दिल्ली केंद्र से और सुन रहे थे समाचार। दोस्तों, आपने सुना संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया गया था। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में प्रातकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 से आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आज के हमारे पलाश के कलाकार होंगे झिरगा भगत एवं साथी

तथा इग्नेश कुमार एवं साथी। दोस्तों, लोकगीतों के इस कार्यक्रम के बाद तुरंत हम जुड़ जाएंगे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से, जो 7:45 से प्रसारित किया जाएगा। स्वर सरिता कार्यक्रम के तहत आज हम

जहां से हम सुबह 8 बजे सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 में सुन पाएंगे मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर दिल्ली से वापस जुड़ेंगे रांची केंद्र और रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। दोस्तों 8:45 का समय होगा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर जुड़ने का, जहां से हम सुनेंगे पुराने फिल्म गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत गुंजन। दोस्तों गीत गुंजन खत्म होने के बाद सुबह 9 बजे हम जुड़ेंगे जोहार पलामू कार्यक्रम से और सुनेंगे आज का इतिहास, स्वास्थ्य सुझाव, स्थानीय गतिविधियां एवं कुछ चुनिंदे फिल्म गीत। दोस्तों 9:30 पर हम प्रसारित करेंगे आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोस्तों आज आप सुनेंगे उमंग की कड़ी संख्या 1326। इसके बाद दोस्तों 10 बजे हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे हिंदी समाचार। 10:05 पे अंग्रेजी समाचार सुनने के बाद दिल्ली केंद्र से सीधे जुड़ जाएंगे मुंबई केंद्र और 10:10 पर सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति उजाले उनकी यादों के। इस तरह से दोस्तों लगातार हम सुनेंगे 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे यादों की महफिल और इसके अलावा सुनेंगे सुरीला सफर, दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, सेहतनामा और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को और इसी के बीच बीच में हम दिल्ली और रांची केंद्र से जुड़कर सुन पाएंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार और प्रादेशिक समाचार। मुंबई, दिल्ली और रांची केंद्र से हमारा रिले कार्यक्रम चलता रहेगा और शाम 5:30 पर फिर से एक बार वापस जुड़ेंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुनेंगे हमारे रेडियो साथी से सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे अब लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश। आज हमारे पलाश के कलाकार होंगे झिरगा भगत एवं साथी।

दोस्तों ये है कार्यक्रम पलाश जो लोकगीतों पर आधारित है। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आपने सुना झिरगा भगत एवं साथियों को। आइए दोस्तों पलाश कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इग्नेश कुमार एवं साथियों की आवाज में कुछ और लोकगीत।

सीता जगता जनने मता नारे रूपे सती सीता।

दोस्तों आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आपने सुना झिरगा भगत एवं इग्नेश कुमार के आवाज में कई खूबसूरत लोकगीत। आइए दोस्तों लोकगीतों के बाद अब हम रुख करते हैं सुगम संगीत की ओर और सुनते हैं अपना कार्यक्रम स्वर सरिता। आज स्वर सरिता के हमारे कलाकार हैं हरिहरण।

दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर सरिता, जो सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम था। आज हमारे इस कार्यक्रम के कलाकार थे हरिहरण। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं अपने दिल्ली और रांची केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव

0: संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर

0: एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। रिपोर्ट।
2: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचय

0: सुर्खी है, जंग फिर शुरू, होर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। 2 न्यू एंटी क्राइम लॉज पास्ड बाय वेस्ट बंगाल असेंबली कम इनटू फोर्स इन द स्टेट टुडे। ISRO successfully carries out 3 major tests of Gaganyaan crew module systems. 5 Indian students win gold medals at 56th International Physics Olympiad 2026. India secures world number 1 rank jointly with other countries. IMD forecasts heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during next 2-3 days. US launches fresh strikes on Iran. And Yannick Sinner beats Alexander Zverev to retain Wimbledon men's singles title. And now the news in detail. In West Bengal, 2 new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the Stringent Anti-Crime Bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
3: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Andashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. More from a correspondent.
4: The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. To do this, a stored cold gas-based uprighting system

0: मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस संबंध में जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। 15 जुलाई को पथ निर्माण विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा होगी। देवघर श्रावणी मेले से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को श्रद्धालुओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
2: श्रावणी मेला तो आप समीक्षा करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उसमें हम एमसी डायरेक्टर को श्रावणी मेला को देखते हुए हमारी तैयारी होनी होनी चाहिए। लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है। और जिस तरह से कुछ नेताओं ने तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहाज में हिदायत दे रहा हूँ, अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहाँ होगा तो मैं उसमें ताला मारूंगा। श्रावणी मेला तो आप समीक्षा करेंगे।
1: गोड्डा शहर के करगिल चौक स्थित आभूषण दुकान में हुई लूट और गोलीबारी की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी मुकेश कुमार ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। वहीं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: हम इतना जानते हैं कि हमको अपराध मुक्त कोटा चाहिए और जो भी सामान ले गया और जिस तरह से भय वातावरण फैलाया है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोग उसको सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी मारे भी जाएंगे और जब मारे जाएंगे निश्चित रूप से भय मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा।
1: रांची जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत कल शाम 4 बजे तक लगभग 74% इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और 24% फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 96% फॉर्म का वितरण तथा 34% फॉर्म का डिजिटाइजेशन दर्ज किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर्स को शत प्रतिशत फॉर्म वितरण, संग्रहण तथा समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने और मतदाताओं से शीघ्र फॉर्म जमा करने की अपील की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में आज से 19 जुलाई तक इंजीनियरिंग, टीआरडी तथा सिग्नल और दूरसंचार विभाग की ओर से संयुक्त रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान रेलवे ट्रैक और ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव तथा आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। ब्लॉक के कारण कई मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के परिचालन में आंशिक बदलाव और समय परिवर्तन किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। आद्रा मंडल के इस रोलिंग ब्लॉक का असर बोकारो, पुरुलिया, आसनसोल, टाटानगर, महुदा और आसपास के रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वे नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को भारतीय महिला हॉकी टीम द्वारा हस्ताक्षरित हॉकी स्टिक भेंट की है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर वाली हॉकी स्टिक न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी महिला नेशंस कप में टीम की ऐतिहासिक जीत की स्मृति है। सिमडेगा जिले में पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। कोलेबिरा थाना की पुलिस ने गोवंशीय पशुओं की तस्करी के लिए रेकी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि बांसजोर क्षेत्र में ताजा गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
4: एक बस से गांजा बरामद किया गया था जिसमें एक पकड़ा गया था और दो फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है संतोष नायक सोना। ये उड़ीसा के कंधमाल जिला का रहने वाला है। गोवंशीय पशु को पार करने के लिए कार से पुलिस की गतिविधि पता लगाया जा रहा है। उसमें दो आदमी को गिरफ्तार किया गया है।
1: मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताते हुए 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को गरज चमक के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर कृषि कार्य करने की सलाह दी है। उधर गुमला जिले में वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। झारखंड राज्य खो खो संघ के तहत राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन रजरप्पा के DAV ग्राउंड में किया गया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मेजबान रामगढ़ और रांची के बीच खेला गया, जिसमें रांची की टीम चैंपियन बनी। मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक ममता देवी ने पुरस्कार वितरण किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से इस खेल को बढ़ावा मिलेगा।
5: रांची की टीम विजेता रही और मैं उन टीमों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सभी बच्चों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जब भी कोई गेम होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, जिसमें कि एक हारता है और एक जीतता है। तो मेरी ओर से जितने भी उप विजेता टीम है, विजेता टीम है, सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।
1: रांची में आयोजित प्रथम झारखंड राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का समापन कल विभिन्न आयु वर्गों और पुरुष एवं महिला वर्ग के फाइनल मुकाबलों तथा पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मध्य पूर्व में युद्ध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। प्रभात खबर ने लिखा है, 15 अगस्त को 25,000 नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है सरकार। झारखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक बढ़ा नामांकन अनुपात, इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार वर्ल्ड रैंकिंग की 4 टीमें एक साथ सेमीफाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा। आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रगति का लेंगे लेखा जोखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने देवघर सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। श्रावणी मेले से पहले सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। चक्रधरपुर आद्रा रेल मंडल में आज से 19 जुलाई तक चलेगा रोलिंग ब्लॉक कार्य। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के मार्ग में बदलाव। आज और कल राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और राज्य स्तरीय बालिका खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ को हराकर रांची की टीम बनी चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

काश। आइए दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का आज के इस कार्यक्रम में। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी सैक चैटर्जी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करते हुए हम बात करेंगे एसपी बालासुब्रमण्यम का। उन्हें प्यार से लोग एसपीबी या बालू के नाम से भी पुकारते थे और वो सिर्फ हिंदी सिनेमा के ही पार्श्व गायक नहीं थे बल्कि उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया और कुल 16 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाए। आइए दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से उस गीत को जिसे एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है देव कोहली जबकि म्यूजिक दिया है राम।

दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रांत के नेल्लोर में हुआ था। एक मजबूत संगीत पृष्ठभूमि वाले तेलुगु परिवार में उनका जन्म हुआ था। शुरुआत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें पार्श्व गायन में एक सफल करियर की ओर प्रेरित किया। इसकी शुरुआत 1966 में तेलुगु फिल्म से हुई और उसके बाद उन्होंने अपने करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में अपने प्रदर्शन के लिए कई बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के पुरस्कार जीते। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म से एक और गीत को, जिसे फिर से एक बार गाया है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने। संगीत है राम लक्ष्मण का और गीत को लिखा है देव कोहली।

दोस्तों, भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण और 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, कोविड-19 से संबंधित जटिलताओं के कारण 25 सितंबर 2020 को चेन्नई में उनका निधन हो गया था। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनकी एक और हिट फिल्म एक दूजे के लिए से एक गीत, जिसे फिर से एक बार एसपी बालप सुब्रमण्यम के साथ आवाज मिलाया है लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, एसपी बालासुब्रमण्यम से जुड़ी एक और बात बताते चले कि एसपी बालासुब्रमण्यम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना के आईटी मंत्री डॉक्टर डी श्रीधर बाबू ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ 15 दिसंबर 2025 को हैदराबाद के रविंद्र भारती में किया था। आइए दोस्तों, अब इस कार्यक्रम में फिर से एक बार सुनते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर के गाए वंश फिल्म के उस गीत को, जिसे लिखा था समीर और म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद।

0: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रसारित एक अन्य कार्यक्रम जोहार पलामू से।
1: जोहार पलामू।

0: आइए दोस्तों सबसे पहले सुनते हैं जनहित में प्रसारित ये कुछ संदेश।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं कार्यक्रम जोहार पलामू से। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो साथी सैकत चैटर्जी। दोस्तों, आपको बताते चले कि ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार आज है 13 जुलाई, वर्ष का 194वां दिन, यानी कि अभी साल में और 171 दिन शेष बचे हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 13 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी, यानी कि कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो 13 जुलाई को घटित हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतिहास के पन्नों पर अपनी नाम दर्ज कराई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि 13 जुलाई 1803 ईस्वी को राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था। दोस्तों, 1905 के 13 जुलाई को कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम

सुझाव दिया था। 1929 के 13 जुलाई को क्रांतिकारी जतींद्र नाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। 1977 के 13 जुलाई को भारत सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मानों को वापस लेने की घोषणा की थी। 1998 के 13 जुलाई को भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम ATP खिताब जीता था। इसी दिन ब्राजील ने CTBT एवं NPT पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों, 13 जुलाई सन 2000 को फिजी में महेंद्र चौधरी समेत 18 बंधक रिहा किए गए थे। 2001 के 13 जुलाई को वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी चीन बीजिंग को सौंपी गई थी। 13 जुलाई 2004 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साइबेरिया और देश के सुदूर पूर्ववर्ती इलाकों के विकास के लिए भारत से और मजबूत संबंधों की इच्छा जताई थी। 2006 के 13 जुलाई को परमाणु बम निर्माण संबंधी ईरान मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सुपुर्द किया गया था। 2008 के 13 जुलाई को अमेरिका में ग्रीन पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व डेमोक्रेटिक सिंथिया मैकनी को अपना उम्मीदवार बनाया था। 2011 के 13 जुलाई को दोस्तों मुंबई के 3 अलग अलग स्थानों पर 3 बम विस्फोट हुए, जिसमें मरने वालों की कुल संख्या 20 से अधिक और घायलों की संख्या 130 से अधिक थी। इस दिल दहला देने वाली घटनाओं का जिक्र सभी राष्ट्राध्यक्षों ने लगभग करते हुए शोक प्रकट किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चाबंदी की गई थी। आइए दोस्तों, अब सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा हिंदी फिल्म गीत।

आइए दोस्तों, अब जानते हैं 13 जुलाई को किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 13 जुलाई 1947 को विश्व प्रसिद्ध भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर उस्ताद देबू का जन्मदिन है। राजनीतिक दल मिजो नेशनल फ्रंट के राजनीतिज्ञ जोरामथंगा का जन्म 13 जुलाई 1944 को हुआ था। 8वीं लोकसभा की सदस्य टी कल्पना देवी का जन्म 13 जुलाई 1941 को हुआ था और इसी दिन यानी कि 13 जुलाई 1941 को ही हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार सुनीता जैन का भी जन्मदिन है। दोस्तों, आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रही है कि पलामू के रहने वाले भारतीय राजनीतिज्ञ जो बाद में असम और मेघालय के राज्यपाल भी रहे, बाबू भीष्म नारायण सिंह का जन्मदिन भी 13 जुलाई है और सन है 1933। जी हाँ, बाबू भीष्म नारायण सिंह पलामू से ताल्लुक रखते थे और भारतीय राजनीति में उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ मानी जाती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी वो काफ़ी नज़दीकी माने जाते रहे हैं। दोस्तों, केसरबाई किरकर पद्मभूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का भी जन्म 1892 के 13 जुलाई को हुई थी। और दोस्तों, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय का जन्म भी 13 जुलाई 1932 को हुई थी। तो आइए दोस्तों, अब जोहार पलामू कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं बीना राय पर फिल्माए गए फिल्मों में से एक फिल्म गीत।

दोस्तों, अभी आप जिस गीत को सुन रहे थे वो बीना राय पर फिल्माया गया गीत था और आज बीना राय का जन्मदिन भी है। दोस्तों, बीना राय और प्रदीप कुमार अभिनीत इस फिल्म का नाम था दुर्गेश नंदिनी। गीत को गाया था लता मंगेशकर, लिखा था राजेंद्र कृष्ण और इसके संगीतकार थे हेमंत कुमार मुखर्जी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं 13 जुलाई को किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हो गया था। दोस्तों, 2021 के 13 जुलाई को प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर, जो 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे, यशपाल शर्मा, उनका निधन हो गया था। और बांग्ला के प्रसिद्ध लेखिका उपन्यासकार आशापूर्णा देवी का निधन भी 13 जुलाई 1955 को हो गया था। दोस्तों, 13 जुलाई को कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी जिनका जिक्र हमने किया। 13 जुलाई को जन्मे व्यक्तियों के बारे में भी हमने जानकारी ली और 13 जुलाई के निधन हुए लोगों के बारे में भी हमने जानकारी साझा किया। दोस्तों, इसी के साथ एक बात आपको बताते चलें कि मौसम करवट ले रहा है, मौसम बदल रहा है और बादलों का आना जाना, उमड़ना घुमड़ना आसमान में लगा हुआ है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, उमस भरा हुआ है। और ये मौसम बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा खतरनाक माना जाता है। डॉक्टर ऐसे में सलाह देते हैं कि आप उचित परिमाण में पानी पीजिए और जितना हो सके ऐसे कामों को ना करें जिससे आपका पसीना ज़रूरत से ज़्यादा बहता हो, और अगर पसीना बहता हो तो आप ज़रूर ORS जैसी घोलों का सेवन करें। डॉक्टर ऐसा सलाह देते हैं, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा को इस समय आपको संतुलित रखना होगा। पानी की मात्रा असंतुलित होते ही आपकी तबीयत खराब हो सकती है और कई तरह की बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, उचित परिमाण में पानी पीजिए और इस मौसम में स्वस्थ रहिए। साथ ही मौसमी फलों का भी आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आम अब खत्म होने को है, लेकिन ये खतरा भी है क्योंकि बहुत दिनों से हम फ्रिज में रखे फलों का सेवन करेंगे, खास करके आम का, तो उसमें ख़राब होने का डर बना रहता है।

तो ऐसे में सावधानी पूर्वक आम का सेवन करें या अन्य मौसमी फलों का सेवन करें। आइए दोस्तों अब एक और फिल्म गीत सुन लेते हैं। यह भी बिना राय पर आधारित है, यानी कि बिना राय पर फिल्माया गया एक गीत हम सुनेंगे क्योंकि आज बिना राय का जन्मदिन है। दोस्तों ये बहुत ही फेमस गीत है, ये जिंदगी उसी की है। इस गीत को हमने लिया है फिल्म अनारकली से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार है सी रामचंद्रन।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। ये थी जोहार पलामू कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आइए दोस्तों इसी के साथ हम जुड़ते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के साथ।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी,
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओ इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
2: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अश्वताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
2: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
2: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
3: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे
4: पशु पक्षी को क्या हुआ है, हमारे घर के सारे सामान बह गए,
5: लगता है अरे ठीक हो गई है
6: क्या? हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
5: सारी फसल बह गई।
7: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
8: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
5: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
8: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
7: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
8: अरे काट काट काट, बताए मेरा भी क्या देख रहा काट।
9: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
7: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुट

0: घटता हुआ महसूस कर रही थी।
1: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, काट, काट, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
4: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: हमारे पशु पक्षी क्या होगा, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
8: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
5: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
8: सारी फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
8: सारे
7: सामान
8: जल्दी
7: से ऊपर ले जाना होगा।
8: चलो जल्दी ऊपर,
7: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
8: चलो चलो,
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
8: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
9: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं। मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन।

0: नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं।
1: हाँ, सात आठ छत्ते, कमाल है।
2: अरे फिर तो मजा आ गया।
3: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
1: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
2: छप्पर फाड़ गए।
3: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
1: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
2: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
3: ठीक है ना, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा।
2: अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ठीक रहेगा।
2: सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं। अच्छा। वो रास्ता छोटा लगेगा।
1: हाँ, हाँ, चलो ठीक है, जैसे पहुंच जाएंगे।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: हाँ,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: क्या जंगल?
2: जल्दी आओ,
1: हमारे सामने से है।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
2: हाँ, सुनो,
1: सुनो,
2: ब्रेक
5: हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
6: बिल्कुल
5: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
7: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
5: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो पेड़ों को।
8: अरे हटो,
5: ये कुछ नहीं कर सकते चाची, तुम भी यहाँ से चिपक जाओ। चिपक जाओगे इसे। अब हम पेड़ों से चिपक गई हैं, अब चलाओ कुल्हाड़ी।
9: देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
5: हम जान दे देंगे मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या हो, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, शिब्बा तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
10: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पैरों से अलग कर दो। अरे बोला जय देवान, जय आगे बढ़ो, आगे चलो।
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
11: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
12: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
13: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे
14: क्या बात भाई, गौरा बहुत कमाल कर दिया।
15: जीतती रहे बेटी, जीतती
5: रहे। तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
16: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
17: और विमलेश को,
16: कुसुमलता,
17: जगबंधु,
16: चेतना
17: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
16: नमस्कार, नमस्कार।
18: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग, यह हमारा प्रायोजित कार्यक्रम था। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जुड़ते हैं अपने दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं हिंदी वो अंग्रेजी समाचार। इसके बाद दोस्तों हम जुड़ेंगे मुंबई केंद्र से, जहां से सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति, और रांची केंद्र से जुड़कर बीच बीच में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। तो आइए सबसे पहले जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
19: दोस्तों आपको बताते चले कि मुंबई केंद्र से जब हम जुड़ेंगे 10:10 पे, तो सबसे पहले सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति उजाले उनकी यादों के। उसके बाद 11 बजे हम जुड़ेंगे रंग तरंग से और 12 बजे हम सुन पाएंगे यादों की

की महफिल। इसी तरह से दोस्तों 1:20 पे हम सुन पाएंगे विविध भारती की प्रस्तुति सुरीला सफर, 2:30 पर हम सुनेंगे सदाबहार नगमे, 3:00 सखी सहेली, 4:00 सेहतनामा, वो 5:02 पे जुड़ेंगे छाया गीत कार्यक्रम से। आइए दोस्तों अब कुछ पल प्रतीक्षा कर लेते हैं और उसके बाद जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे 10:00 हिंदी समाचार और 10:05 पे अंग्रेजी समाचार।

0: साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल आर एन रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर

0: जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले ईरानी सेना द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। In West Bengal, two new anti-crime laws come into force in the state today. State Governor R.N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. In June this year, the Assembly passed the stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026. More from our correspondent.
2: Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. The state government says the new law will enable quicker and stricter action against antisocial activities, riots, attacks on police personnel and organized crime. Chief Minister Shubhendu Odhikari has earlier stated that violence or disruption of public order in the name of protest will not be tolerated. He also expressed hope that the new law will play an important role in ensuring the safety and security of women and children. Sandeep Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: Indian Space Research Organization says it has successfully carried out 3 major tests of the Gaganyaan crew module systems. The first test pertained to ensuring an upright position for the crew module after splashdown in the sea, considered one of the most important crew safety requirements. The second test involved examining the separation of the umbilical mechanism that serves as a link between the crew module where astronauts live and the service module, which provides power and propulsion. The third test validated the structural integrity of the crew module during the apex cover separation event. The apex cover protects the parachutes and associated subsystems during the mission. 5 Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. The gold medal winners are Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Anant Bindale from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shreshth Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad. With this achievement, India secured the first position jointly with Russia, China, Kazakhstan, South Korea and Taiwan among 381 students from 87 countries. Prime Minister Narendra Modi today said that when all-round development ensures positive transformation in the lives of every citizen, it gives fresh momentum to the nation's progress. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said, "The country is continuously working to further strengthen India's capabilities with this inspiring spirit." The quote conveys that ensuring the welfare of women, protecting and nurturing the younger generation and continually making the necessary arrangements for the unity, security, prosperity and orderly governance of the nation are the constant duties of every representative of the people.

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम
0: नहीं।
1: उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व्ड थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरुभव ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर

अगू को रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे, और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी

0: वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल बागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा।
0: जो विरोध करेगा, या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था, और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी
1: वो
0: है।
1: आराम से बेच सकते थे, पैसे
0: वो
1: ले सकते
0: हाँ
1: थे।
0: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे
1: आज भी
0: उस वक्त,
1: मौजूद हैं।
0: आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया, कि वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा, बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल।
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये
1: बिल्कुल
0: मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन है।
0: ट्रेडिशन है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है।

0: आखिर वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
1: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे
0: कमजोर
1: होती गई और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो। आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
0: बिल्कुल
1: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है। इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
0: जुझारू
1: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूं, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो। ओके या लोग मिलने आते थे तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं। तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे बिकॉज वो एक कलाकार थे,
0: ये होना ही नहीं चाहिए।
1: हाँ,
0: कोई भी रीजन हो, नहीं
1: और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
0: बिल्कुल,
1: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री
0: राइट,
1: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
0: देखिए समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं
1: exactly.
0: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए
1: बहुत,
0: और
1: बहुत
0: लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय।
1: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी।
0: ओहो।
1: और वो लाइन रुक ही नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी जाना जरूरी है बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
0: दूर दूर से आए थे।
1: और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो। कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक दो तीन महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
0: गजब।
1: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं। वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी। लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
0: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
1: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
0: क्या बात है।
1: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी। लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
0: बिल्कुल।
1: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इसलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
0: यहाँ एक गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से

0: राजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
2: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वही मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
2: और क्रिएटिव है
1: जी।
2: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
2: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
2: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
2: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूम कर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ा इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
0: लेकिन
1: लो।
0: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी
1: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
1: जी।
0: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी।

0: ये सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। okay. और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके, कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
0: क्या बात है रीमा जी। पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
1: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोखले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, और तब जाके मैंने राशुमान देखी, अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। आई सेड मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी, बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
0: राइट।
1: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है, तो मैं एनजीओज के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
0: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था, तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं, पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन किस्से घटनाएं और पापा उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
0: थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए जगजीत सिंह की गाई ये गजल, जिसे लिखा है निदा फाजली ने। संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने और एल्बम का नाम गम बड़े आते हैं।

दुनियादारी। इस फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। विश्वेश्वर शर्मा ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत।

अनुराधा पौड़वाल और तलत अजीज की आवाजों में सुनिए इब्राहिम अश्क का लिखा ये गीत। राजेश रोशन का संगीत है, एल्बम का नाम बहार आने तक।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अशोक खोसला की गाई ये गजल, जिसे लिखा है डॉक्टर राही मासूम रजा ने, जगजीत सिंह का संगीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में सुनिए कमर जलालाबादी की ये गजल। धुन बनाई है जगजीत सिंह ने।

हमारे दोस्त थे, लंदन में रहे, ऐसे बहुत पैसे आ गए उनके पास, जैसे फेंक गए ना अभी, तो वो पंजाब जब वापस गए 15-20 साल के बाद, वहाँ उन्होंने बंगला बनाया और उसकी जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी उन्होंने बुलाया सब दोस्तों को, बोले देखिए हमारा ड्राइंग रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये किचन है, ये वो है, सब करके बड़ा अच्छा बंगला था। फिर पीछे लॉन में ले गए तो वहाँ 3 स्विमिंग पूल बना रखे हैं, तो एक में गर्म पानी, तो वो समझ आ गई बात सर्दियों में नहाने के लिए, एक में ठंडा पानी तो वो गर्मी में नहाने के लिए, तो एक खाली पड़ा हुआ है। तो उनको पूछा भी ये खाली क्यों पड़ा है स्विमिंग पूल, बोले बात ये कि कभी कभी नहाने को दिल नहीं करता है। कई वैसे पंजाबी में कई ऐसे जोक हैं जो जिनका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हंसी आती है, जैसे मैं जगजीत सिंह हूं, ये सुरेंद्र सिंह है, अभी हंसने वाली बात नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी अपने घोड़े पे आ रहे हैं और जगजीत सिंह जी पूछते हैं उनको, सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा घोड़ा कितने है? तो सुरेंद्र सिंह कहता भी घोड़े पे तो मैं बैठा हूं, तुमको दिखता नहीं। कहता फिर भी पूछने से की हर जाएगा।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में अभी आपने सुनी ये गज़ल। राणा अकबर बदी का ये रचना थी।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और

ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत, मन्नाडी की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ब्रेक पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता की आवाज और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में अमृत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने।

और आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, छठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त। और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा कि यह मसौदा नीति विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श और उनसे प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को शामिल करते हुए तैयार की गई है। मंत्रालय ने 27 जुलाई तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपराध के खिलाफ आम नागरिकों की एकजुटता पर जोर दिया और मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की।
1: कोई घर में काम करने आए तो उनका आधार कार्ड जरूर लो, उनका चेहरा मिलान करो, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व आपकी सुरक्षा में सिर नहीं लगा पाए। और रोजाना जो डकैती, चोरी और जो हत्याओं का दौर जमशेदपुर और सब जगह शुरू हुआ है, इसलिए नागरिक सुरक्षा समिति का गठन और कौन बाहरी व्यक्ति आ रहा है उसके पूरे मूवमेंट पर नजर रखें, ताकि अपने लोगों की हम सुरक्षा कर सकें।
0: रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के मजदूरों की सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। याचिका में प्रभावित मजदूरों के सुरक्षित घर वापसी, आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी मांग की गई थी। धनबाद की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने नरसा विधायक अरूप चटर्जी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। सांसद की ओर से 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, आरोप वापस लेने, सोशल मीडिया से संबंधित सामग्री हटाने और 2 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में कल देर शाम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान का विरोध कर रहे असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और 2 बम भी फेंके। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेले में इस वर्ष 50 लाख से ज्यादा भक्तों के बासुकीनाथ पहुंचने का अनुमान है। मंदिर प्रशासनिक समिति के सचिव और दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल किशोर ने संबंधित अधिकारियों और धर्म रक्षणी सभा के सदस्यों के साथ बैठक की। अनुमंडल पदाधिकारी ने तैयारियों की जानकारी दी।
2: पंडा धर्मेश सभा सदस्यों के साथ एक मंदिर में बैठक की गई है, जिसमें श्रावणी और भादो मास में मंदिर खुलने का समय, जलार्पण स्टार्ट करने का समय, अर्घा लगाने का जो गाइडलाइन है और जो एसओपी बनाया गया है कि अर्घा कब लगाया जाएगा, उसके संबंध में निर्णय लिया गया है। और कांचा जल चढ़ाने वाले लोग हैं उनका भी संख्या लिमिट किया गया है। और जितने भी पंडा समाज के लोग हैं, जो धर्मेश्वरी सभा के द्वारा जो लिस्ट बनाया जाएगा, जिनको आई कार्ड दिया जाएगा, उसकी सूची को इनको प्रायर अप्रूवल करा लेना है।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल

0: कतरास के करकट्टा जंगल में कल सीआईएसएफ ने अब तक का सबसे बड़ा सर्च अभियान चलाकर 200 टन अवैध कोयला जब्त किया और कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की। कमांडेंट अमित कुमार के नेतृत्व में करीब 70 सीआईएसएफ जवानों, सीसीएल प्रबंधन और मैकलसीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने पिपरवार क्षेत्र में गोपनीय सूचना के आधार पर जंगल के भीतर चल रहे अवैध खनन और तस्करी के अड्डे को ध्वस्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
1: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गए। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। जामताड़ा जिला योग संघ की पहल पर डीएवी विद्यालय परिसर में अंतर विद्यालय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला योग संघ के सचिव दीपक दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी चाईबासा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
2: इंटर स्कूल योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जामताड़ा के 15 स्कूलों से लगभग 250 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को हम लोग प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रहे हैं और ये जामताड़ा जिला योग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। आने वाले समय में जो बेहतर खिलाड़ी होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चाईबासा में जामताड़ा जिला को प्रतिनिधित्व करेंगे।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बिंदाले, नई दिल्ली के रुषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना उद्देश्य। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने अपराध के खिलाफ आम नागरिक एकजुटता पर दिया जोर। मोहल्लों में नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की अपील की। रामगढ़ के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की याचिका पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया संज्ञान। तमिलनाडु में झारखंड के मजदूरों को मिलेगी राहत। कतरास के करकट्टा जंगल में कोयला माफियाओं के बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई। सीआईएसएफ ने 200 टन अवैध कोयला किया जब्त और इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक किए पूरे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों के गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है। यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं। यही सच्चाई है।

ये भी एक साथी ने लिखा है और ज़रूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है जिसके जरिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल रोशन का संगीत।

0: पागल।
1: तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है। आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये लिखते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय को स्पंदन है, हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहाँ पर, यानी जो कमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद को रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारेआम। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, इस टिप्पणी को पढ़कर सच मानिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो, इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले एक गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत। इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफें आपने सही हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूँ, कभी अपने ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो, साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो, हमें बस जीते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। और इससे पहले जो गीत आपने सुना, उसका शब्द था मन। और पहचानिए कि इस अगले गीत का शब्द कौन सा है।

किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब

तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गांव, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है जहां हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये वो मंच है जहां हम दिल खोल कर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराजगी हो, कुछ हो, तो हम यहाँ पर साझा करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूं ही हल्की फुल्की बातों के साथ आज का सुरीला सफर अब संपन्न करने की दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी

0: बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीका अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। डी एन मधोक ने इस गीत को रचा है। सी रामचंद्र का संगीत।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हसरत जयपुरी के बोल।

0: स्वावलंबन पोर्टल पर पंजीकृत 60 से अधिक दिव्यांगों की जांच कमेटी द्वारा की जा रही है, जिसके बाद प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से सीधे उनके घर भेजे जाएंगे।
1: दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए प्रक्रिया है कि एक स्वावलंबन पोर्टल है जिसमें प्रमाण पत्र चाहने वाले अपनी सारी डाटा को उसमें एंट्री करते हैं, दिव्यांग कैंप में बुलाकर उनका दिव्यांग प्रतिशत जांच करके प्रक्रिया अनुसार उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करते हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके घर तक पहुँचा दिया जाता है।
0: इस पहल से जिले के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए दर्जनों जरूरतमंद परिवारों को सीधे लाभ पहुंचा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान जेल आईजी सुदर्शन मंडल की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें हृदय संबंधी समस्या के बाद आईसीयू में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड के पहाड़ी गांव लाखाई टी में पारंपरिक हर्बल चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। आईआईटी मुंबई के पूर्व प्रोफेसर एवं वरिष्ठ चिकित्सा शोधकर्ता डॉ. देवतोष दत्ता ने गांव पहुंचकर स्थानीय आदिवासी औषधीय परंपराओं और जड़ी बूटियों का अध्ययन किया। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक शोध से जोड़कर नई चिकित्सा संभावनाओं की तलाश करना है। देवघर एयरपोर्ट ने हवाई संचालन के सफल 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 12 जुलाई 2022 को शुरू हुई इस सेवा से अब तक 10,27,000 से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। निदेशक जय बैनर्जी के अनुसार वर्तमान में दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु के लिए उड़ानें जारी हैं। आगामी अगस्त से गुवाहाटी के लिए भी नई सेवा शुरू होगी। भारत की जूनियर हैंडबॉल टीम चीन के चुझोउ में 15 से 26 जुलाई तक होने वाली 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जमशेदपुर से रवाना हो गई है। यह टीम चीन के लिए रवाना होने से पहले जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई थी। खेल पदाधिकारियों ने टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
2: 19 द जूनियर एशियन चैंपियनशिप चाइना जुचाओ में ये चैंपियनशिप 15 से 26 जुलाई आयोजित हो रहा है। इस प्रतियोगिता से वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई भी मैच और इस प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए यहाँ टाटा स्टील प्लांट में जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंप लगा था।
0: खेल विशेषज्ञों को उम्मीद है कि टीम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
0: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे ही, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
0: मैं नहीं, हमारे श्रोता,
1: हमारे श्रोता
0: जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी।
1: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
0: पत्ता गोभी,
1: तो पत्ता गोभी की भी थी,
0: लौकी का पराठा भी बनता है,
1: लौकी का भी होता है,
0: प्याज का पराठा
1: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
0: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का, तो फिलहाल एक गाना सुन लें हम।
1: चलिए

ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।

0: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना,
1: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
2: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया कौन जाने, जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो, उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
1: राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
3: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
2: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
0: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
2: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहां कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी।

0: अब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुव्वत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं? रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी। शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी और जूं ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
1: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
2: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
1: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली,
0: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ, अभी नहीं।
2: बहन क्या रात भर भी नहीं ठहरोगी?
0: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
2: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
0: अब खुद कहला दूंगी। हाँ,
2: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
0: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
1: इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
0: कैसे हो गुरु सेवक? आज यहां ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
1: गुरु सेवक हंसकर बोला,
3: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत। कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
0: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
3: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए।
0: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूं।
2: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
1: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
0: नहीं नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
1: आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
3: दीदी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
0: हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान का

0: सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालने लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
1: अच्छा,
0: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 ही महीने में 250 कर दिया।
1: अच्छा,
0: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
1: अच्छा एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
0: हाँ वही, मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
1: अच्छा।
2: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही ना हुए।
1: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी, हाँ, लेकिन अब इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।
2: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वहीं रह जाती, आखिर एक महराजन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
2: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी मगर उसने हमेशा यही कहा,
1: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ, आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
2: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
3: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
1: तो ला कर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी? महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च, मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी, तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं?

0: तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
1: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपने दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?
1: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं? वह तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मालूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई, उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकून, गैर मुनसिफाना ख्यालात पैदा होना बिल्कुल फित्री है। वो कोई फिलोसोफर नहीं, तारिकुद्दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी आपने सुनी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, रामदुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहनें आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
4: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहनें कहानी का भाग दो। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हैं हम एक गीत।
5: सुनते हैं ये गाना।

0: मुझे तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है। क्या कहेंगी दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना।
0: अब जी, हमारे जी। बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध

0: मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है,
1: बिल्कुल।
0: तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता, जो गुणवत्ता है, वो घटा सकता है। और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में ले लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी
1: बिल्कुल।
0: जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है। मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह हैं, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी। अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ ना सूझे सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं, वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें, तो
1: बिल्कुल। और
0: देखिए
1: जी,
0: आप
1: उस पर थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं
1: सोच
0: सही
1: सकते
0: तरीके
1: हैं
0: से।
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं, उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे
1: चलिए
0: और हम
1: सुनते
0: उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना।

0: उठापटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित हैं, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेकर बहस होने वाली थी, उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है। अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रहे, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं।
0: जैसे कि
1: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र चू। और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है। तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है और किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए,
0: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है उस कमरे के।
1: और

0: और हमारी एक सखी हैं जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा उस जल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है, काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो पोंछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें, खास तौर पे बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब हम क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनवा सकते हैं, तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे
1: बिल्कुल,
0: कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: और तो जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में, और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं, मदद करती हैं जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए, और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखाकर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
1: और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
1: खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाली
1: आज थे? हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है।
1: जी, ये अलग तरह की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है, उबले हुए मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च, या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस

0: मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले अदरक लहसुन ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दू किस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है।
0: जी
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर लें, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन अदरक प्याज हरा धनिया हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है, तो तवे पर सेक लें। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही
0: एक
1: होता
0: ही
1: है
0: होता है जी।
1: पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: की था और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं। दीपा जी बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के अध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निपटारे पर संतोष जताया। गड़बड़ी मिलने पर धनबाद और गढ़वा के दो बीएलओ की सेवा समाप्त कर दी गई है। भाजपा ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दावोस और दिल्ली यात्रा के एमओयू केवल पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बगैर परमाणु बिजली घर समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई। देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हुई। बैठक में कर्रो, सारठ और पालोजोरी में नवजात शिशुओं के लिए केयर यूनिट तथा बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा और एआई प्रशिक्षण सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने एआईआर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए चुनाव पाठशाला और बीएलओ की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया में आज वीर शहीद रतिलाल महतो का 27वां शहादत दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऊपरबेड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में झामुमो नेता कालीदीप सोरेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्य में आगामी कई दिनों तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने संथाल परगना और कोल्हान सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए वज्रपात की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
2: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
2: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है, और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
2: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
2: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
2: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है, और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।

0: जी, तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक, इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है।
1: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है, ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते
0: जी
1: हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है,
0: जी
1: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है, लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
0: जी
1: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन
0: जी
1: इंफॉर्मेशन होना महत्व का है,
0: हाँ
1: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल
1: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा, ये बात सही नहीं है।
0: जी
1: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली, उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट,
0: जी
1: जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं।
0: जी
1: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा, ये गलत बात है, और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
0: बिल्कुल, तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं।
1: राइट, पहली बात मैंने बताया, ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है।
0: जी
1: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं,
0: जी
1: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है,
0: जी
1: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है।
0: जी जी
1: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं,
0: जी
1: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की
0: ओके
1: धार वीक होना,
0: ओ
1: यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं।
0: जी
1: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही, ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं,
0: जी
1: जैसे डायबिटीज,
0: यस
1: जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है,
0: ओ
1: न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज
0: ओ
1: जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है,
0: जी
1: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं,
0: जी
1: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है
0: जी
1: या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
0: जी जी तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है।
1: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को,
0: जी जी
1: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सिवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
0: जी
1: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं,
0: जी
1: ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है, सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है।

0: सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है. यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है. ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं. एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है
1: जी.
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है. जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है
1: जी.
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है. PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से. बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है.
1: बिल्कुल.
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
1: जी.
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है. ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं. ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है. सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी.
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है.
1: ओके.
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है. सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं.
1: जी जी.
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए. सो ये अगेन गलत बात है. खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं. इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है.
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी. और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं. तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है. अब हम यहां पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए. बताइए कौन सा गाना सुनवाया.
0: जरूर. इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है.
1: क्या बात है.
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है. सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ.
0: दो आंखें बारह हाथ.
1: क्या बात है. सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है.

0: और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं,
0: जी
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले ने जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो
0: बेहतर
1: हमारी
0: करें।
1: इच्छा रहती है।
0: जी
1: बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है,
0: जी जी
1: लेकिन हम भगवान नहीं है। हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना,
0: जी
1: या तो
0: जी
1: ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि
0: जी
1: हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशन।

0: उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनेमिक्स कहते हैं.
1: जी हाँ.
0: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा.
1: जी जी.
0: सो कुछ केसेस में हम ये स्पेशल यूरोडायनेमिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए.
1: जी.
0: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था.
1: जी.
0: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बढ़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है. आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सकें और पेशेंट को राहत दे सकें, ये कोशिश रहती है.
1: जी.
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है. सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं.
1: जी, जी.
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं.
1: जी, जी.
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है.
1: जी.
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है.
1: जी, जी.
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है. तो आजकल की जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है, अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए? क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में.
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट. जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है. कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है.
1: जी, जी.
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है. पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है.
1: जी जी. डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े. तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं. कौन सा गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें.
1: वाह, क्या बात है. किशोर कुमार की आवाज.
0: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है.
1: जी, सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी, जी।
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से, आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती हैं, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है।
0: जी।
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
1: जरूर
0: है।
1: तो जरूर।
0: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है। स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
0: जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार

0: यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए
1: जी, जी.
0: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की. सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है. लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है. जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है.
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा.
0: एब्सोल्युटली नहीं. और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
1: जी.
0: सो हर पुरुष को मैंने बताया ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
1: जी. और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं इसके
0: कारण? सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं
1: जी हाँ.
0: कभी कभी वहां पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं. सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है. और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है
1: जी जी.
0: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ये बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है
1: जी. तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है
1: जी.
0: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थाश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है
1: जी.
0: आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा. और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या शुरू हो जाती है. सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है. सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है.
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े That's हुए right. हैं. तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए. कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो.
1: ब्लैक पैंथर काफी का गाना.
0: जी हाँ जी, रोमांचिक गाना है
1: जी,
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है
1: जी जी. डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे.
0: तो हाँ जी,
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे
1: जी.
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है
1: जी जी.
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है
1: जी.
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं. सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस
1: जी जी.
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
1: जी, तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
1: बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि इस स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं।
0: जी
1: दूसरी बात, लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे,
0: जी
1: रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है।
0: जी
1: सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है।
0: जी जी
1: सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।
0: जी
1: कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं, सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी जी
1: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते, कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है
0: जी जी
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं।
0: जी
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है।
0: जी
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल, कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए। और फोर्थ इन्फेक्शन, विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस,

0: काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए। सच बात है, पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है
1: जी।
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है
1: जी।
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: There are young ladies जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी also उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है। सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है
1: जी।
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है, और थर्ड फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी।
0: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है
1: जी। जी
0: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं, ये गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और बड़े ही जानकार डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम।
0: जरूर,
1: कौन सा गाना सुनवाया?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है
1: जी,
0: बहुत अच्छा गाना है
1: जी।
0: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा
1: जी। सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है।
0: हुँ.
1: क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में
0: जी।
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है
0: जी।
1: क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: सो ये महत्व

0: की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं।
1: जी, इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
0: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है।
1: जी
0: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है।
1: जी
0: हर पेशेंट वेदर इज मेन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है।
1: जी
0: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है।
1: जी
0: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये
1: बिल्कुल
0: जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है।
1: जी बिल्कुल
0: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट।
1: जी
0: सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
1: बिल्कुल
0: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनी बडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और एवरीथिंग इज ऑल राइट, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर
0: जी
1: ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
0: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन
1: शर्म
0: इससे
1: और
0: शर्म के
1: संकोच।
0: मारे में कि
1: जी
0: ये बात
1: बिल्कुल
0: हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
0: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं,
1: ओके
0: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है,
1: ओहो
0: ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए, इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
1: ओ
0: इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना, या
1: जी
0: जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक न हो जाए।
1: जी
0: सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
1: जी दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में 23 जुलाई को होने वाले सेवादल के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची कांग्रेस भवन में बैठक हुई। मुख्य संगठन नवीन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बताया गया कि सम्मेलन में झारखंड से हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आईटीडीए योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुंदाक नदी पुल निर्माण की धीमी प्रगति पर संवेदक के खिलाफ 15 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। हजारीबाग में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल परिसर से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत रवाना किया गया जागरूकता सारथी रथ अगले एक महीने तक जिले के गांवों में भ्रमण कर लोगों को परिवार नियोजन के लाभ और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करेगा। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते।

कुछ कहना नहीं होता है, न ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी, पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता। सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाते हैं, और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

0: की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।
1: ओरे माजी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है सायंकालीन सभा में। आइए सायंकालीन सभा की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह कार्यक्रम विवरण के साथ, और जानते हैं अभी से लेकर रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रम को। अभी से थोड़ी देर बाद हम लेकर हाजिर होंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन चर्चा में। आप सुनेंगे स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को लाभ, साथ ही संयमित होना कितना आवश्यक। वार्ता में केंद्र सरकार की भावी 24 नीतियां। वार्ताकार हैं संगीता सिन्हा। शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर खेती बाड़ी ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा आज का फसलों में जिप्सम का महत्व, अंतर्वर्ती खेती के अनेकों लाभ। वार्ता में पारंपरिक एवं आधुनिक खेती। वार्ताकार हैं संध्या चंद्रा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। चर्चा में सकर गाय पालन के लाभ। आज की बात में अरहर एवं तिल के प्रबंधन। भेंट वार्ता में सुनेंगे बाजरा खेती की वैज्ञानिक तकनीक। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, कृषि वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र शिया की पलामू। भेंट करता है संतोष कुमार। आज की नसीहत, आज का मौसम, आज का बाजार भाव, हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे।

शाम 6:55 पर आकाशवाणी रांची गिनती प्रसारण समय शामिल होंगे, जहां सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार शाम 7 बजे। जिले में आजकल शाम 7:10 पर 10:15 पर प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आप सुनेंगे आकाशवाणी से हमारे स्टूडियो से FM 103 MHz पर। 7:30 पर एक रंग फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 7:45 पर कल्याणी कार्यक्रम आप सुनेंगे। भेंट वार्ता में छाती में पानी भर जाना कारण निदान, भेंट वार्ता कारण डॉक्टर तेजवीर सिंह रांची। रात्रि 8 बजे चित्रपट से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 उर्दू में समाचार। विविध भारती की प्रसारण सेवा का समय होगा रात्रि 9:30 पर आज के फन का। रात्रि 10 बजे हम स्टूडियो से लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 11 बजे हिंदी में समाचार रात्रि आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। अपनी सभा का समापन करेंगे हम हमेशा की तरह रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 MHz पर। कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: इस गाने के बाद आइए सुनते हैं वार्ता।
1: जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और विकास की योजनाओं के बूते जनता को क्या मिला, यह जानना बहुत जरूरी है। भारत के हर नागरिक को यह जानने का पूरा पूरा हक है कि प्रतिदिन के विकास कार्यक्रमों का संपूर्ण एवं पारदर्शी लेखा जोखा उन्हें मिले। खासकर महिलाओं को इन योजनाओं से परिचित कराया जाए। तो आइए सरकार की भावी 24 योजनाओं पर और उनके द्वारा महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिलने वाले हैं, इस पर एक नज़र डालें। सरकार की पहली योजना है डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक डिजिटल इंडिया है। इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई। इस अभियान का मकसद भारत को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था को बदलना है। सरकार की मंशा है

कि सभी सरकारी विभाग इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़ें ताकि प्रभावी प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। कागजी कार्रवाई को कम करके सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली जनता तक पहुंच सकें। ऐसा करने से सरकारी कामकाज की पारदर्शिता बढ़ेगी। ई क्रांति के जरिए जनता के कामकाज का जल्द से जल्द निस्तार हो सकेगा। सरकार की दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के शुरू दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए और हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया। इस योजना के तहत अब तक 3.2 करोड़ खाते खोले गए हैं, उनमें करीब 1500 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति 0 बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है। सरकार की तीसरी योजना है स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना ध्येय है। शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही के सबसे साफ शहरों में मैसूर को नंबर 1 शहर माना। सरकार की तीसरी योजना है मेक इन इंडिया। इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश एवं विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर देश बनाना है, रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारना है। सरकार ने ऐसे 25 सेक्टरों की पहचान की है जिसमें ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है। सरकार की सातवीं योजना है अटल पेंशन योजना। यह योजना देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि बुढ़ापे में उन्हें पेंशन मिल सके एवं बीमारी, दुर्घटना एवं वृद्धावस्था में अभाव की चिंता न झेलनी पड़े। सरकार की आठवीं योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 100 करोड़ की शुरुआती राशि के साथ यह योजना देश के 100 जिलों में शुरू की गई, जिससे महिलाओं के कल्याण सेवाओं के प्रति जागरूकता और सुधार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की नवी योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत देश भर के युवाओं को कुशल बनाने की योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 4 से 5 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जा सकेगा। सरकार की दसवीं योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस योजना के तहत वेव पोर्टल द्वारा 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपयों तक की सीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से वित्तीय सुविधा प्रदान की जा सकेगी। सरकार की 11वीं योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर 9.2% का ब्याज दर मिलता है। सरकार की 12वीं योजना है मुद्रा बैंक योजना। इस योजना का उद्देश्य छोटी छोटी कंपनियों को बढ़ावा देना है। इसमें शुरुआती कंपनी को 50,000 तक एवं विकसित कंपनियों को 5 से 10 लाख तक का लोन दिया जा सकेगा। सरकार की 13वीं योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख रुपए का बीमा कवर मात्र 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध कराया गया है। सरकार की 14वीं योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें 18 साल से 70 साल तक की उम्र के नागरिक की दुर्घटना या मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख तक का कवर दिया जाता है। आंशिक विकलांगता की

व्यक्ति में 1 लाख का बीमा कवर है। सरकार की 15वीं योजना है किसान विकास पत्र। इस योजना की शुरुआत 1988 ईस्वी में लॉन्च की गई, जिसमें 1000, 5000, 10000 एवं 50000 की राशि को 100 महीनों में दुगनी करने का प्रावधान है। सरकार की 16वीं योजना है कृषि बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य अपनी फसल का बीमा कर मौसमी प्रकोप या किसी अन्य कारणों से फसल को नुकसान पहुंचने पर किसानों को राहत पहुंचाना है। सरकार की 17वीं योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। इस योजना के तहत देश के सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है। सरकार की 18वीं योजना है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत किस मिट्टी को कौन से उर्वरकों की जरूरत रहती है और फसल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। सरकार की 19वीं योजना है नेशनल हेरिटेज सिटीज का विकास। इसका उद्देश्य हेरिटेज सिटी के विकास पर है। सरकार की 20वीं योजना है इंद्रधनुष योजना। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को 7 बीमारियों जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी से लड़ने के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। सरकार की 21वीं योजना है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सरकार इस योजना के तहत भारत के गांवों में अबाध गति से 24/7 बिजली पहुंचाने के लिए 75,600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सरकार की 22वीं योजना है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण जगत के युवाओं को सरकार के अवसर मुहैया कराने के लिए उद्देश्य लक्षित हैं। इसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार की 23वीं योजना है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत विदेशों में रह रहे भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन एवं बीमा की व्यवस्था है। सरकार की 24वीं योजना है उड़ान प्रोजेक्ट योजना। जम्मू एवं कश्मीर के उड़ान योजना के तहत 40,000 युवाओं को 5 साल में प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने एवं उनमें रोजगार क्षमता को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद NSDC और निगमित क्षेत्र द्वारा इन योजना का क्रियान्वयन PPP मोड में किया जा रहा है। ये थी सरकार की भावी योजनाएं, जिनमें निश्चित रूप से महिलाएं लाभान्वित हो सकेंगी।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। रांची में आयोजित दो दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद में राजस्व कार्यों और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। आयुक्त ने जिले में SIR फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। गढ़वा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 98% गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा किया जा चुका है। लोहरदगा के किस्को स्थित एकलव्य आदर्श विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शिविर में 288 बच्चों को मलेरिया की जांच करवाई गई, जिसमें 11 बच्चे संक्रमित पाए गए। संक्रमित पाए गए सभी बच्चों का स्वास्थ्य टीम द्वारा तत्काल उपचार शुरू कर दिया गया है। देवघर श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को निर्बाध मोबाइल नेटवर्क देने के लिए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने समीक्षा की। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को कांवरिया पथ पर अस्थायी टावर लगाने और नेटवर्क क्षमता बढ़ाने का कड़ा निर्देश दिया है। साहिबगंज में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1,71,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा रही है। इसके साथ ही अगले दो दिनों में सर्वजन पेंशन के लाभार्थियों को भी 3 महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी रांची केंद्र से सुन रहे थे आप, क्षमा कीजिएगा, आकाशवाणी रांची केंद्र से भी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हम लेकर हाजिर हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी कुछ ही पलों में।

किसान भाई, कृषि जिसे आम तौर पर खेती के रूप में जाना जाता है, एक प्राथमिक गतिविधि है जो खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल और कई अन्य लाभ पैदा करती है। भारतीय संदर्भ में पारंपरिक खेती से तात्पर्य ऐसी खेती से है जो कई पीढ़ियों के अनुभव से संचित ज्ञान और बुद्धि के साथ की जाती है। अधिकांश जानकारी दृश्य और श्रव्य निर्देशों के माध्यम से दी जाती है। इसे अक्सर क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है। जिस जीन पूल का उपयोग किया गया था वह घर में ही विकसित किया गया था और स्थानीय वातावरण के अनुकूल था। इसे अधिक आत्मनिर्भर कहा जाता है। दूसरी ओर पारंपरिक कृषि पद्धतियों को दस्तावेजीकरण के मामले में कम ध्यान दिया गया है, इसीलिए वर्तमान शिक्षित आबादी इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है और परिणाम स्वरूप इसकी सराहना करने में असमर्थ है। जब किसी भी गतिविधि की बात आती है तो यह एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है और इसे उन लोगों के दैनिक जीवन में एकीकृत करता है जो इनमें संलग्न है। किसान भाई, पारंपरिक कृषि प्रणाली के तहत खेती की विशेषता, आधुनिकीकरण की अनुपस्थिति और कृषि क्षेत्र में किसी भी तरह के व्यवसायीकरण की अनुपस्थिति है। श्रम से लेकर बीज तक पारंपरिक तरीकों का उपयोग हर जगह किया जाता है। यह एक पुरानी खाद्य उत्पादन तकनीक है जो आधुनिक तकनीक या उन्नति के लाभ के बिना हजारों वर्षों से उपयोग में है। इस तरह की खेती का अधिकांश हिस्सा जीविका के उद्देश्य से किया जाता है। देश में हल और अन्य पारंपरिक कृषि उपकरण अभी भी उपयोग में है। तो किसान भाई, देखते हैं पारंपरिक कृषि के कुछ लाभ हैं। तो क्योंकि हम रासायनिक खादों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद जैसी प्राकृतिक खादों का उपयोग कर सकते हैं, हम उर्वरकों पर पैसा बचा सकते हैं। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के अभाव के कारण पानी की आवश्यकता में कमी आती है। क्योंकि हम केवल प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कृषि योग्य क्षेत्र बहुफसलीय कृषि शैली के लिए उपयुक्त है। पुराने दृष्टिकोण में उत्पादन की लागत कम होती है क्योंकि इसमें कम संसाधनों का उपयोग होता है। क्योंकि इसमें जैविक खेती का उपयोग किया गया है, इसीलिए भोजन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो किसान भाई, ये तो हमने की लाभ की बातें, अब आइए थोड़ी नुकसान की भी बातें करते हैं। पारंपरिक खेती से जो नुकसान है, जैसे खेती में किसानों को अपनी फसल काटने में लगभग 15 घंटे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उच्च तकनीकी वाली खेती में बस कुछ ही घंटे लगते हैं। क्योंकि इसकी कटाई में लंबा समय लगता है, इसीलिए फसल पकने में लगने वाले समय की लागत वसूलने के लिए इसे ऊंचे दामों पर बेचना पड़ता है। साथ ही पारंपरिक तरीके से खेती करने से मिट्टी का उपयोग होता है, परिणाम स्वरूप अपघटन में उपलब्ध समय का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप फसलों को मृदा रोग लगने का भी अधिक खतरा बना रहता है। फसलों पर कीटों के हमले को रोकने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, परिणाम स्वरूप पौधों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। तो ये तो हुई पारंपरिक खेती से नुकसान की बातें, और अब देखते हैं कि आधुनिक खेती। आधुनिक खेती एक ऐसी खेती है जो इस अंतर्निहित ज्ञान की अवहेलना करती और उत्पादन के पारंपरिक तरीकों से बेहतर होने का दावा भी करती है। इसके अलावा समकालीन खेती अधिक पूंजी गहन और बड़े पैमाने पर प्रकृति की है, और यह भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशाल जीन पूल का बहुत कम उपयोग करती है। यह एक एकल खेती है जो स्थानीय संसाधनों, संदर्भ, जलवायु या अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रख सकती, और यह एक समुदाय में एक दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकलती है। आधुनिक खेती से मतलब है कि समकालीन तरीकों और तकनीक का उपयोग करके खेती करने से है। आधुनिक विज्ञान, साथ ही खोजों और नवाचारों की कई नई विशेषताएं खेती करना संभव बनाती है। आधुनिक खेती सिंचाई प्रणालियों के साथ साथ पूंजी निवेश के नए स्रोतों का उपयोग करती है। साथ ही किसान भाई, वर्तमान समय में कृषि किसानों को एक व्यावसायिक व्यवसाय और रोजगार के कई अवसर प्रदान करती है। साथ ही ड्रिप सिंचाई से लेकर स्प्रे सिंचाई तक, नहर प्रणाली से लेकर खेती से लेकर कटाई तक के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, कई विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उच्च उपज देने वाले हाइब्रिड
HYB बीजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा समकालीन कृषि प्रणाली मुख्य गतिविधि का समर्थन करने के अलावा साइड कंपनियों के साथ साथ किसी भी सेवा प्रदान करने वाले संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर प्रदान करती है। किशन भाई, अब देखते हैं कि आधुनिक खेती के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, खाद्यान्न की कमी के बिना संपूर्ण जनता को भोजन उपलब्ध कराना, साथ ही भूमि का उपयोग उसकी पूर्ण क्षमता तक किया जा रहा है, यानी कि फसल सघनता 300% से अधिक। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। वैश्विक बाजार यहाँ तक कि हमारे आम संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उपलब्ध है, और हम कैलिफोर्निया के सेबों के साथ साथ अन्य फसलों का भी आयात करते हैं। साथ ही कारखानों के विकास और मशीनों के उपयोग के कारण यह क्षेत्र विस्तारित हो रहा है और उत्कृष्ट नौकरियां पैदा कर रहा है। और अब किसान भाई देखते हैं कि आधुनिक खेती के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में लवणता बढ़ती है और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा की झूठी भावना पैदा होती है। साथ ही आधुनिक उपकरण महंगे हैं और इसलिए अधिकांश लोगों के पहुंच से बहुत बाहर है। साथ ही उत्पादन की विशिष्टता खत्म हो रही है। चूंकि पारंपरिक कृषि प्रणाली किसानों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, इसीलिए यह लोगों की लगातार बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अनुपयुक्त है। दूसरी ओर आधुनिक कृषि मानव खाद्य मांगों को पूरा करने के प्रयासों के साथ साथ प्रजाति प्रजनन कृषि पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेती को अनुकूलित करना है। किशन भाई, पारंपरिक खेती आधुनिक तकनीकों के बिना मैनुअल श्रम और सरल औजारों का उपयोग करके फसलों की खेती और पशुधन पालने की सदियों पुरानी प्रथा है। यह अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए आवश्यक है, जो वैश्विक खाद्य उत्पादन में योगदान देता है। विधियों में प्राकृतिक उर्वरक, फसल चक्र और पारंपरिक सिंचाई शामिल है। आधुनिक खेती के बावजूद पारंपरिक खेती जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत और टिकाऊ खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो देखते हैं कि पारंपरिक कृषि उपकरण के विषय में, किसान भाई, पारंपरिक खेती में खेती की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई तरह के औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रमुख औजार हैं हल। हल एक मजबूत उपकरण है जिसे अक्सर घोड़े से खींचा जाता है, जिसमें मिट्टी को काटने और उलटने के लिए एक ब्लेड होता है। यह इष्टतम रोपण स्थितियों के लिए मिट्टी को तोड़ता और पलटता भी है। अब देखते हैं हैरो के बारे में। हैरो में स्पाइक्स या डिस्क होते हैं, जिनसे खेत में घसीटकर गांठों को तोड़ा

किया गया है जिसमें मैनुअल श्रम से कम हो, यह अनाज और फलों जैसी फसलों की कटाई की प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। बीज ड्रिल, सीड ड्रिल एक ऐसा उपकरण है जो रोपण के दौरान एक निश्चित गहराई और अंतराल पर नियंत्रित बीज रोपण सुनिश्चित करता है। यह व्यवस्थित और समान रूप से बीज बोता है। और अब देखते हैं किसान भाई की पारंपरिक खेती के तरीके कैसे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक खेती की तरीके स्थिरता और भूमि के साथ गहरे संबंध पर जोर देती है। सीधे दी गई तरीकों आधुनिक खेती से अलग है जो अधिक संसाधन कुशल विकल्प प्रदान करती है। अब देखते हैं कृषि वानिकी, इसमें खेती और वानिकी को मिलाकर ऐसे पेड़ उगाए जाते हैं जो फसलों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाते हैं। यह विधि तापमान, सूर्य के प्रकाश और हवा को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। इस दृष्टिकोण से लाभ उठाते हैं जिससे फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुकूल होते हैं। फसल चक्रण, एक ही क्षेत्र में कई मौसमों में अलग अलग फसलें उगाना फसल चक्रण कहलाता है। यह दृष्टिकोण फसलों की विशिष्ट पोषक तत्वों पर निर्भरता को कम करता है और कीटों और खरपतवारों से जुड़े जोखिमों को कम करता है। इसके अलावे यह कीटों और खरपतवारों में प्रतिरोध विकसित होने की संभावना को भी कम करता है। देखते हैं मिश्रित फसल, इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें एक साथ उगाई जाती है। उदाहरण के लिए किसान एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के पौधे लगा सकते हैं जिसमें विविधतापूर्ण और संतुलित फसल सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अंतर फसल, यह तब होती है जब आप दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाते हैं। तो किसान भाई, इसका लक्ष्य संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके भूमि के एक टुकड़े से अधिक फसल प्राप्त करना है, क्योंकि प्रत्येक पौधा अकेले में संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। और किसान भाई, अब देखते हैं पारंपरिक खेती के कुछ फायदे हैं। इस खेती के कई लाभ हैं जिसे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता का संरक्षण होता है। स्थिरता, पारंपरिक किसान अक्सर ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रकृति के अनुकूल होते हैं। वे बहुत ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल करने से बचते हैं जिसमें पर्यावरण संतुलन में रहता है। फसलों का विविधीकरण, पारंपरिक खेतों में आप पाएंगे कि अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती है। यह मिश्रण न केवल खेतों को विविधतापूर्ण बनाता है बल्कि अगर एक फसल अच्छी नहीं होती है तो भी मदद करता है। पारंपरिक ज्ञान, किसान एक दूसरे को खेती के पुराने तरीके सिखाते हैं। इसका मतलब है कि वे जिस खास जगह पर काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सबसे अच्छी तरकीबें पता है। पारंपरिक किसान रसायनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहते, इससे न सिर्फ हवा और पानी साफ रहता है बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। सरल और किफ़ायती उपकरण, वे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं वे सरल है और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। यह उन छोटे किसानों के लिए अच्छी खबर है जिनके पास शायद महंगी मशीनें नहीं हैं। किसान भाई, पारंपरिक खेती में लोग अपने हाथों और बुनियादी औजारों का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों और पुरानी परंपराओं पर आधारित जैविक खादों पर निर्भर रहते हैं। इसके विपरीत आधुनिक खेती के लिए कृषि निवेश की आवश्यकता होती है जिसमें कार्यबल, थ्रेशर और हार्वेस्टर जैसी उन्नत मशीनरी और नवीनतम तकनीकें शामिल है। इन तकनीकों में चयनात्मक प्रजनन, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक शामिल है।

0: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम के अंतर्गत हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की। मोटे अनाजों की खेती की पलामू में क्या संभावनाएं बनती हैं, खासकर बाजरा, ज्वार, रागी वगैरह की, इस पर विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चिया की के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार। महाशय का स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को मोटे अनाजों के बारे में जानकारी दी जाए।
1: किसान भाइयों, जान जाए कि झारखंड में जो है मोटे अनाज की आज काफी संभावनाएं हैं। पहले हमारे खाद्यान्न में, हमारे भोजन के डाइट में मोटे अनाज हुआ करते थे, आज वो गायब हो गए हैं और जिसके चलते हमारा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतने नुकसान हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटे अनाज की खेती बहुत अच्छी मानी जाती थी और इसमें खास करके ज्वार की खेती के बारे में अपार संभावना है। धान, मक्का, मड़ुआ के बाद ज्वार का प्रमुख स्थान है। ज्वार मनुष्यों के लिए और खाने के लिए अनाज के रूप में और पशुओं के चारा के लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं और की पैदावार जो है और इसमें प्रोटीन की भी मात्रा जो हम लोग देखते हैं कि गरीबों जो ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर है उसको प्रोटीन का सोर्स हमें नहीं मिल पाता है, तो ये इसमें प्रोटीन भी 12% के आसपास में रहते हैं, 10 से 12% रहते हैं और फैट वगैरह 3% वसा के रूप में रहते हैं और 70% कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। यानी कि हमारा जो ये अनाज है मोटे अनाज और इसकी खासियत यह है कि पलामू, लातेहार और गरवा यहाँ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ पर कम वर्षा होती है और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट इन सारी फसलों की सबसे कम है। यानी कि आप अगर इस वर्ष की भी ले लें बात तो हमारे धान की खेती अच्छी नहीं हो पा रही है और हर बार ये संभावना रहती है कि 2 वर्षों के बाद में ऐसी बारिश यहाँ कम होती है, रेन शेडो एरिया में आता है, असिंचित अवस्था में हम लोग जो है ज्वार की अगर खेती करते हैं तो हमारा इसका 450 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर में वर्षा में ये इसका पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये मुख्यतः टाँड़ की फसल, यानी कि हम लोग टाँड़ के फसलों में बहुत सारी ऐसी फसलों को लगाते हैं जैसे मक्का लगाते हैं या फिर अन्य फसल, कभी धान भी लगा देते हैं, लेकिन अगर कम पानी होती है तो ये फसलें मारी जाती है। तो यहाँ पर हो जाती है कि जब सुखाड़ की स्थिति भयावह हो जाती है, लोगों में एक डर बन जाता है कि अब सुखाड़ आ गया, अब क्या करेंगे, क्योंकि सभी लोग वर्षा वाली ही खेती करते हैं, जाड़े में तो खेती कम होती है, तो इसमें स्थिति में बहुत उनको जो है खाने का अनाज भी नहीं मिल पाता है और इसके चलते बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो किसान भाइयों को हम यही बताएंगे कि कम से कम ज्वार की खेती करेंगे तो यहाँ इतनी वर्षा हो जाती

0: है टाण वाली भूमि में कि ज्वार की खेती, आप निश्चित रूप से कुछ अनाज आपके घर में आ जाएगा। और इसके साथ में आप दलहनी फसलों में अरहर का कॉम्बिनेशन ले लें तो कम से कम रोटी दाल खाने के लिए कम पानी व्यवस्था में भी जो है हमको चिंता नहीं करना है। कभी कभी हम धान के चक्कर में पूरी फसल मारी जाती है और धान नहीं हुआ तो हम लोग सुखाड़ मान लेते हैं। इस विषम परिस्थितियों में हम लोग ज्वार की अगर खेती करते हैं तो ज्वार निश्चित तौर पर अनाज के रूप में और चारे के रूप में, चारे भी बहुत अच्छी फसल है जिसको कि चारे के रूप में किसान, और इस वर्ष की बात कर लें तो हमको जो है धान अगर नहीं हुआ तो चारा के रूप में भी नहीं है। माने मनुष्य के लिए भी, आदमी के लिए भी खाद्यान्न की समस्या होती है और जानवरों के लिए भी समस्या होती है, क्योंकि जानवर और हमारे दो अभिन्न अंग हैं। तो इस तरह से हम लोग मोटे अनाज की खेती करते हैं तो हम लोग चावल, मक्का, मड़ुआ के बाद ज्वार की ही करते हैं, और खास करके हम लोग रोटी जो खाते हैं तो इसकी रोटी थोड़ी मोटी होती है, रफेज होती है, फाइबर्स की मात्रा होती है। गड़बड़ क्या हो गया हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में कि हम लोग आटे खाते हैं, गेहूं के आटा, और उसको भी बारीक खाते हैं, माने चलनी से चाल देते हैं, नतीजा क्या होता है, कंस्टिपेशन होता है। तो हम लोग अगर ज्वार की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोगों को जो है दाल और अरहर के रूप में दाल, कभी कभी हम लोग ज्वार के साथ अरहर के कॉम्बिनेशन, एक लाइन ज्वार और एक लाइन अरहर लगा के कर लेते हैं। तो हमारा ये तो निश्चित हो गया कि हमको जो है खाने के रूप में कोई, खाने के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक अब बात हो गई हम लोग की, जो बात करें इसकी जो है बुआई का समय का, तो ये मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में जिस तरह से टाण वाली फसलों को हम लोग आता करते हैं, टाण वाली भूमि में हम लोग इसकी खेती करते हैं।
1: अभी तो बहुत किसान भाई,
0: हाँ बहुत, अभी बहुत किसान भाई अभी भी हम लोग, चूंकि ये इसकी 110 से 95 दिन की भी है, 100 दिन की भी वैरायटी है, 110 दिन की भी है। अच्छा। तो आप ज्वार की खेती उसको करके आप कर सकते हैं। तो ये ज्वार की खेती हम लोग इस परिस्थितियों में भी कर सकते हैं। हम लोग देखें कि इसके लिए जो है बीज दर, तो बीज दर हम लोगों को जो है 12 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और लाइन से लाइन 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधे 15 सेंटीमीटर। जिस तरह से हम लोग मक्का की खेती करते हैं उसी ढंग से इसकी भी ज्वार की खेती करते हैं। अगर हमें देखना पड़ता है कि हमें ज्यादा चारा लेना है तो कौन सा प्रभेदों का चयन करें, और हमें अनाज ज्यादा लेना है तो कौन सा प्रभेद को चयन करें, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो पलामू परिवेश में हम लोग देखते हैं कि अगर प्रभेदों की बात करें तो CSB20 प्रभेद है और CSB17, ये दोनों प्रभेद बहुत ही अच्छे प्रभेद हैं। CSB20 की जो है हम लोग खासियत ये देखते हैं कि इसका जो है हमारे पास में 115 दिन की है, और CSB किसान भाई जो समझ रहे हैं 17 जो है वो 95 दिन का है, अगर हाँ तक परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो अगर हमको कम दिन है, अवधि है, तो हम लोग 17 का प्रभेद का, CSB17 का उपयोग करेंगे। अगर लग रहा है कि हमारे पास समय है तो CSB20 का करेंगे, लेकिन देखते हैं। और पलामू में इसको ज्वार को हम लोग जिनोर भी कहते हैं, तो किसान भाई घबराने की जरूरत नहीं है कि इसको जिनोर भी कहते हैं। तो जिनोर जैसे आप खेती करते हैं तो इसको जरूरत है इसकी खेती के रकबा को हम लोग बढ़ाएं टाण वाली भूमि में। तो इसकी जो है अगर हमें ज्यादा लेना है, चारा लेना है, तो इसकी हाइट भी ज्यादा होती है, यानी कि 2 मीटर के आसपास में इसकी हाइट होती है किसान भाई। और जो हम लोग लेते हैं CSB17, ये छोटे प्रभेद हैं, तो इसमें चारा जो है हमको, अगर हम लोग CSB20 लेते हैं तो इसमें चारा का मात्रा जो है हमको जो है 150 से ऊपर क्विंटल, 200 क्विंटल आएगा प्रति हेक्टेयर, और 17 में जो है 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जहां तक अनाज की बात करें हमने, तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है CSB20 प्रभेद के ज्वार को लगाएंगे तो उत्पादन देगा, और उसमें जो है हमारे पास में 25 क्विंटल के आसपास में उत्पादन देता है। तो हम लोग अनाज के साथ चारे और उसके साथ में हम लोग दोनों की संभावनाएं हमें बढ़ जाती है। तो किसान भाई इसको
1: इसके चारे भी तो स्वादिष्ट,
0: हाँ इसके चारे भी स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हम लोग को किसान भाई थोड़ी सी हम लोग को सावधानी, चारे की जब चर्चा आपने कर दी तो ये बहुत अच्छा है कि हम सावधानियां में ऐसे बताते ही कि चारे को जब भी लगाएं तो किसान भाई इसमें एक SCN का फॉर्मेशन होता है, पॉइजन का फॉर्मेशन होता है कम पानी की अवस्था में। लेकिन किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि 45 दिनों के पहले चारे को काट के ना खिलाएं। 45 दिनों के बाद जब फूल आ जाते हैं उसके बाद आप 50 दिनों के बाद खिलाते हैं तो इसमें कोई इस तरह की समस्या नहीं होती है। जी। अगर हमको चारा ज्यादा पैदा करना है, अनाज ज्यादा करना है, तो हम लोग बीज दर को बढ़ा देते हैं। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो जिस तरह मक्के की खेती करते हैं और एक लाइन अगर अरहर लगाना है और एक लाइन ज्वार लगाना है तो हम लोग 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग दोनों फसलों को लगा सकते हैं। और जहां तक की बात है मिट्टी की बात है, तो ये टाण वाले भूमि है और बलदुई जो मक्के के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, बलुई दोमट मिट्टी, वो मिट्टी अगर होती है तो इस मिट्टी में हम लोग खेती कर सकते हैं और पीएच 6 से 7.5 के बीच में अगर हो तो इसके लिए ज्यादा ही उपयुक्त है।
1: तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो हर भूमि पे हमारे किसान भाई कर सकते
0: हैं। हाँ, खास करके मैं वो गौपालक किसानों को जो चारा के रूप में करते हैं इसको जो है बरसात के अलावा अन्य सीजन में भी कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन ध्यान यही रखना है सावधानियां के रूप में कि 45 दिनों के पहले उसको न खिलाएं। और अगर सिंचित अवस्था है, ये तो असिंचित अवस्था की बात की, जब सिंचित अवस्था आपके पास में पानी है और चारा की खेती करना है, हम लोग चारा के रूप में करना है या फिर अनाज के रूप में करना है, तो फिर पानी वाली स्थिति में इस पॉइजन का जहर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, एहतियात बरतने चाहिए। हम लोग को ये देखते हैं कि और इसके जो बीज दर, हम लोग बीज की उपचार, किसान भाई जब भी कोई भी बीज लगाते हैं, ज्वार की बीज, हमने समय बता दिया कि मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में है, तो किसी भी बीज को लगाने के लिए बीज उपचार हम लोग कार्बंडाजिम से 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज को उपचारित करके और ज्वार को एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 45 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधों से पौधों के बीच में 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह से हम लोग ज्वार की अगर उसमें खेती करते हैं तो हमारा, और उर्वरक की जहां की बात होती है तो 60-40-20 किसान भाई, नत्रजन की मात्रा 60 और हमारे स्फूर की मात्रा को 40 और पोटास की मात्रा को 20
1: कब देनी चाहिए?
0: ये कम से कम 2 स्प्लिट में देते हैं। एक तो बुआई के समय हम लोग आधी मात्रा को खाद को डाल देते हैं और आधी मात्रा जो यूरिया की है तो किसान भाई इसको जो है 88 केजी यूरिया जो है प्रति हेक्टेयर डालेंगे, यानी कि 1.25 केजी के आसपास अगर प्रति की जो है कट्ठे के हिसाब से हम बात करें तो 1.25 केजी कट्ठा अगर डालते हैं 25 से 30 दिनों में निकाई गुड़ाई करने के बाद में तो और मिट्टी चढ़ाते हैं उसी समय हम लोग यूरिया का भुरकाव करते हैं तो हमारे साथ में ये अच्छी उपज इनको मिलेगी किसान भाइयों को। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अगर किसान भाई, जब हम लोग निकोनी तो किसान भाई करते हैं, मिट्टी को चढ़ाते हैं 25-30 दिनों के बाद में, लेकिन अगर किसी के पास समस्या है, आदमी नहीं है घर पे, तो हम लोग रासायनिक खरपतवारों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: बुआई के समय ही हम लोग जो है एट्राजिन का प्रयोग करेंगे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से तो हमारे पास घास निकलने की समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। तो हमारा अगर निकोनी के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं किसी कारण से तो हम रासायनिक खरपतवारों का इस्तेमाल करके अच्छी उपज को हम लोग ले सकते हैं। और खास करके हम लोग देखते हैं किसान भाई, इसमें बहुत सारे रोग व्याधि सूट फ्लाई करके हमारे पास में जो है किसान भाइयों के यहाँ लग जाते हैं और वो कीट जो है बहुत नुकसान करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है, या फिर तना छेदक, जब देखते हैं कि नी हाइट घुटने के पास जब ज्वार आ जाते हैं तो फिर उसमें भी जो है तना छेदक लग जाते हैं, तो तना छेदक अगर किसान भाई लगते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा जो है कोराजन बाजार में उपलब्ध है 0.6 ml, यानी कि 1 ml से कम आप 1 लीटर पानी में घोल बनाकर कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रिजेंट दवा जो बाजार में आती है फिप्रोनील के नाम से तो वो 4 से 5 दाना प्रति गाभा में अगर डालते हैं तो हमें तना छेदक से समस्याओं से किसान भाई को नुकसान पड़ सकते हैं। साथ साथ इसमें किसान भाई ज्यादातर रोग व्याधियां कम लगती हैं, ऐसे अगर लगते हैं रोग तो रस्ट रोग हमारे पास लगते हैं जिसमें कि उसमें देखेंगे गाभा में लाल भूरे रंग का जो है गोल धब्बा बन जाता है तो इसके लिए यह एक तरह का रोग है और इस रोग को दूर करने के लिए हम लोग बाजार में टिल्ट नाम की जो दवा है वो 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के उसमें डालेंगे तो हमारा जो है इस रस्ट रोग से छुटकारा मिल सकता है।
1: और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मोटे अनाजों की खेती से छूट गई?
0: हाँ किसान भाई, आप जाने जब भी इसकी खेती करें तो हमें देखें कि असिंचित अवस्था में रेनफेड में हम लोग की ज्वार बहुत ही अच्छी चीजें मानी जाती है। हम लोग कभी कभी किसानों को देखते हैं कि मोटे अनाज से रुझान उनका हट गया है और फिर पूरी दुनिया भारत मोटे अनाजों की तरफ लौट रहा है। क्यों? इसका कुप्रभाव हम लोग देखते हैं कि जब आटे को बारीक चाल देते हैं, उसके चोकर को भी निकाल देते हैं तो हम देखते हैं कि कंस्टिपेशन से सारे लोग ग्रसित हैं। अगर ज्वार की रोटी खाते हैं तो प्रोटीन के हिसाब से बैलेंस डाइट भी है और हम जो है हमारा स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है और कम दिनों में फसल और कम पानी में, जो पलामू में 450 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर पानी अगर होगी और उतनी पानी इस तरह से रेनफेड एरिया में पड़ती ही है हर बरसात में, तो हम अनाज के साथ साथ चारा भी उत्पादन करेंगे और उसके साथ में अच्छे जो है हमारा जो है जानवरों का स्वास्थ्य रहेगा, मनुष्यों का स्वास्थ्य रहेगा और हमारा कभी रिस्क नहीं होगा कि हमारी खेती अच्छी होगी या नहीं।
1: आप थे पलामू जिला क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र छियाकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप हमारे स्टूडियो में आए और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz श्रोताओं खुशी पलों में शाम के 6:55 में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सभा में। आप सुनेंगे 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पे जिले में आजकल।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में आया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे बाहर पैसेंजर रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज करते रहते हैं, कौन खाता है, इतना ही नहीं ढूंढते थे कहीं रेलवे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात। ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन का एक नया रिकॉर्ड बना है, जो बढ़कर 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ताजा ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह संख्या वर्ष 2014-15 की तुलना में 31% अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और स्टेम विषयों में विद्यार्थियों का बढ़ता नामांकन समावेशी भारत का एक बड़ा संकेत है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा की। आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने शिकायतों के त्वरित निवारण पर संतोष जताया।
7: झारखंड में करीब करीब 90% से ज्यादा कार्य हो चुके हैं। चुनाव कार्य पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक कार्य हो रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह किंतु परंतु नहीं है। जो हमारा कंप्लेन था BLO घर घर नहीं जा रहे हैं, उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि BLO को घर घर जाकर के सत्यापन करना है, न के बूथ पर बैठ करके।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गड़बड़ी मिलने पर धनबाद और गढ़वा के 2 BLO की सेवा समाप्त कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को फॉर्म जमा करने के लिए कैंप लगाने की अनुमति नहीं है।
8: कोई भी कैंप करवाने के लिए बात करके उसी तरह से कराया जा रहा है, उसमें कैंप केवल पॉलिटिकल पार्टी कर सकते, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, कोई बात कर सकता है, उसी तरह से कोई व्यक्ति कैंप नहीं कर सकता।

0: फिर पॉलिटिकल पार्टियां अपने या वोटर के तरफ से BLA2 का माध्यम से करा सकते हैं, वहां पर भी वोटर से कोई भी फॉर्म भरवाने के नाम में पैसा खर्च नहीं लेना है।
1: छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने धनबाद में राजस्व कार्यों और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समाहरणालय में आयोजित बैठक में उन्होंने दाखिल खारिज मामलों को समय सीमा के भीतर निष्पादित करने का कड़ा निर्देश दिया। आयुक्त ने जिले में SIR फॉर्म वितरण और डिजिटलीकरण की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
2: लक्ष्य के अनुरूप जिला चल रहा है और जिले में जो भी हल्की फुल्की निर्देश थे देने का था मैंने दिया है। आंतरिक संसाधन के जितने भी विभाग थे उनका भी प्रगति संतोषप्रद है, ऐसा कोई मुझे देखने को मिला। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिजिटाइजेशन होने का वो संतोषप्रद है। शहरी क्षेत्र में कुछ कमी है जिसको हम लोग समय पर पूरा कर।
1: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी सदर अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विकसित किए जाएंगे। इन विशेष केंद्रों में आधुनिक लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रसव संबंधी सभी समग्र स्वास्थ्य सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। नई दिल्ली में आगामी 23 जुलाई को अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा दल का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज रांची के कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड सेवा दल की बैठक हुई। मुख्य संगठनकर्ता नवीन कुमार सिंह ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दावोस यात्रा के दौरान जिन कंपनियों के साथ MOU हुआ था उन्हीं के साथ दिल्ली में दोबारा MOU कर प्रस्तावों की रीपैकेजिंग की गई है। उन्होंने केंद्र की अनुमति के बिना जिंदल स्टील के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के MOU पर कड़ी आपत्ति जताई।
3: 99,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को जोड़ दिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना एक बेहद संवेदनशील विषय होता आप जानते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन की आवश्यकता होती है, वो बिना लिए हुए उन्होंने घोषणा कर दी कि ये निवेश होगा। मैं कागज का एक टुकड़ा मानते हैं।
1: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितता के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन और अभ्यर्थी कल रांची स्थित JPSC कार्यालय का घेराव करेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर आज रांची में अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की बैठक हुई। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रदर्शन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता जताई। अभ्यर्थियों ने सभी छात्रों और राजनीतिक दलों के छात्र विंग से राजनीतिक मतभेद बुलाकर एकजुट होने की अपील की है। रांची में आयोजित 2 दिवसीय पंचायत समुदाय समन्वय कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के बिना समृद्ध झारखंड की कल्पना अधूरी है। उन्होंने समावेशी स्थानीय विकास के लिए पंचायतों और स्वयं सहायता समूह के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
4: पंचायती राज के प्रतिनिधि और जो हमारी समूह की बहनें हैं जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन बना करके अब काम कर रही हैं, उनके सामूहिकता से किस तरीके से हमारे पंचायत हमारे गांव और कैसे समृद्ध हो सकते हैं। आजीविका के जो काम है उसमें GPDP और जो विलेज VPRP को कैसे समायोजित करते हुए हम लोग अपने गाँव को समृद्धि की तरफ ले जाएं, इसका यह प्रयास है और यह सहभागिता से संभव है, उस पर यह कार्यशाला।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने आज रांची में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांड्या सिंह से मुलाकात कर विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय मजबूत करने पर चर्चा हुई। राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और दुमका सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। हालांकि राज्य में अब भी सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई है। रांची में 26 जुलाई से शुरू होने वाले डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर खेल सचिव मुकेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। मुरहाबादी स्टेडियम में 16 अगस्त तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन की सुरक्षा और साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आगामी 18 जुलाई को भारतीय थल सेना द्वारा शहर में विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की जताई प्रतिबद्धता। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। देश में उच्च शिक्षा में नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, सुधारों का दिख रहा असर। राज्य के सभी सदर अस्पतालों में बनेंगे अत्याधुनिक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को एक ही परिसर में मिलेंगी सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से की मुलाकात, ग्रामीण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा। और रांची में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर खेल सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। 18 जुलाई को भारतीय सेना करेगी विशेष ट्रॉफी टूर का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
6: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
7: ना, पहले बचत।
6: पहले झुमके?
7: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री।
6: लेकिन झुमकों का क्या?
7: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
8: आरबीआई कहता है
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुमला सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का प्रत्येक महीने की 9 तारीख को निःशुल्क व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है, इसके तहत तो जो मेन ध्येय होता है कि हम लोग वैसे प्रेगनेंसी को हम लोग एड्रेस करते हैं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनको हम लोग अस्पतालों तक लाए और अस्पताल में ला करके उनको हम लोग उचित जो एक क्वालिटी सर्विसेज है वो मुहैया करा सके, जो एसेंशियल जो हमारा जांच है वो जांच कर सके, अल्ट्रासाउंड कर सके एवं जो भी दवाएं हैं वो दवा हम लोग उपलब्ध करा सके। आज हम लोग एक भोजन भी देते हैं, वो एक टोकन होता है। एक्चुअली वो टोकन इसलिए होता है कि हम लोग इसी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं कि यू फर्स्ट, पहले आप खाइए तब अपने घर के और लोगों को खिलाइए, क्योंकि आप गर्भवती हैं और आपको ज्यादा जरूरत है भोजन की।
1: गुमला वन प्रमंडल इस मानसून में आरडीएफ तथा सिविल कल्चर स्कीम के तहत गुमला जिला के अलग अलग क्षेत्रों में 200 हेक्टेयर वन भूमि में 2 लाख से अधिक पौधे लगाएगी। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी अहमद बिलाल अनवर ने बताया कि
3: 2-3 बारिश और जैसे हो जाएगी, मिट्टी में नमी बढ़ जाएगी, तब प्लांटेशन में कार्य कराया जाएगा। आरडीएफ जो स्कीम हमारा है और सिविकल्चर जो स्कीम है, उसके तहत जहाँ जहाँ प्लांटेशन होगा उसके लिए सारी बैकग्राउंड वर्क वो किया जा चुका है। वी एक्सपेक्टिंग कि विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज प्लांटेशन का कार्य जोर शोर से शुरू होगा। तो इस बार 2 लाख से ज़्यादा पौधे डिफरेंट लोकेशंस पे, करीब 200 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड में ये कार्य किया जाएगा, जिसमें आपका फॉरेस्ट लैंड में, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड में प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन, रिवर साइड प्लांटेशन का कार्य किया जाएगा इस मानसून अगले एक महीने के अंदर।
1: महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग गुमला के संयुक्त तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जीवन परियोजना के 1 वर्ष की प्रगति एवं आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने बताया कि
4: ये एक जो परियोजना जो 1 वर्ष पहले पिछले जुलाई से प्रारंभ की गई जिले में और ये टाटा ट्रस्ट के प्रोजेक्ट जिले में संचालित की गई थी, और इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिलों से 6 साल के बच्चों और माताओं के पोषण में कैसे सुधार हो, इसको लेकर ये संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जीवन परियोजना के नाम से। और ये परियोजना 1 साल होने के बाद हमारे सभी ICDS सेंटर्स के सेविका इनके साथ मिलकर इन पर काम किए हैं।
1: बहरहाल केंद्र सरकार की यह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाने और उनका तुरंत इलाज करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद कुछ ही पलों में।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से सोमवार का दिन है और आपके लिए बुनियाद कार्यक्रम लेकर आ गया। बुनियाद कोई नया नाम नहीं, सोमवार का दिन ही इस वक्त अलॉटमेंट है। ऑल इंडिया रेडियो से ये कार्यक्रम सुनते हैं और इसमें हम युवा साथियों, उनके माता पिता, अभिभावक और छोटे छोटे भाई बहनों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई करने से आपके लिए आज के दौर में रोजगार मिलना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टेक्निकल पढ़ाई कर लेते हैं कोई भी, तो ज्यादातर टेक्निकल पढ़ाई में आप स्वरोजगार भी तलाश सकते हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हाँ, जहाँ MBBS की करीब 250 सीटें हैं। पूरे भारत से हाँ लड़के लड़कियाँ, युवक युवतियाँ आकर यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, PG करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल पढ़ाई की, तो इंटरमीडिएट बायोलॉजी जिन्होंने किया है उनके लिए सारा कुछ है यहाँ। मेडिकल तो है ही, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल की पढ़ाई है, फार्मेसी की पढ़ाई है, नर्सिंग की पढ़ाई है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई है, हर पढ़ाई यहाँ उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है ना कि कैंपस में रहने की सुविधा भी है, सेफ कैंपस है। अगर हम बात करें जिन्हें लिखने पढ़ने का बोलने का शौक है, तो जर्नलिज्म की पढ़ाई भी है। इसके अलावे यहाँ लॉ की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई, ढेर सारी पढ़ाई है जिसे इस रेडियो के माध्यम से बता पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम इसीलिए नंबर बताते हैं कि आप जाकर के बात कर ले इस नंबर पर, कार्यक्रम खत्म हो और लगाइए नंबर 9431899002 और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121051 1800121051। और अगर जो तफसील पूरी जानकारी चाहते हैं, तो एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in, इस पर जाकर के आप

0: लग जाए तब आसान किश्तों में इसे चुकाया जा सकता है और लड़कियों के लिए तो और भी ज्यादा सुविधाएं हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हर एपिसोड में हम किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं और उस कोर्स के विषय में जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ होंगे यहाँ कुमार आलोक प्रताप, जी हाँ, जो कि रजिस्ट्रार हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। इनसे आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि बीएड स्पेशल एडुकेशन अभी एक नया कोर्स आया है जो सिर्फ यही गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में है। आप चाहें तो इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आप प्लेन बीएड करते हैं ना? हाँ, बीएड करते हैं। इसमें स्पेशल है, मतलब चैलेंज लोगों के लिए भी आप पढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ सकता है, अपना अपना अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। हमने कहा ना कि बुनियाद में हम वैसी जानकारियां देते हैं जो आपके जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम कुमार आलोक प्रताप जी से कहते हैं, स्वागत करते हैं सर आपका। और आप रजिस्ट्रार हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के। अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय आप थोड़ा सा दे दीजिए।
1: मैं कुमार आलोक प्रताप गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार का कार्यभार देख रहा हूँ। मैं कुल सचिव का कार्यभार देख रहा हूँ। मैं प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष था जब मैं परीक्षा नियंत्रक था, अब जब मैं कुल सचिव हूँ। यह सब एक शैक्षणिक यात्रा में बच्चों से इंटरेक्शन तो होता ही है, उनके माँ बाप आते हैं और हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है।
0: वाह, क्या बात है। मुझे भी मौका मिलता है इतने बड़े बड़े लोगों से बातचीत करने के लिए। इतने लंबे समय से, इतनी लंबी यात्रा रही है गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जब शुरू हुआ और आज की स्थिति में। हाँ, बहुत सारा समय निकल गया, बहुत सारी चीजें हुई और आपने बताया और मुझे भी पता है कि सबसे पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला था और धीरे धीरे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला गया, पूरा बिहार और झारखंड। जी हाँ, इस कार्यक्रम बुनियाद को सुन रहा है। सबसे पहले हाँ कुमार आलोक प्रताप जी, हम चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में, हाँ, इसके दर्शन के बारे में, है ना, अपनी वाणी से, अपनी आवाज से लोगों को परिचित करवाइए। सबसे पहले
1: भगवान की ईश्वरीय, मैं सौभाग्य कहूँगा कि मैं गोपाल नारायण सिंह जी को इस मामले में बहुत मैं साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी एक यह जिद ही थी कि मैं कुछ भी करूँगा तो गाँव में करूँगा। उसका मतलब असर हम देख रहे हैं इस इलाके में और आज तो खैर हमारा विश्वविद्यालय हमारे कुछ मेहनत के परिणाम है, हमारे शुभचिंतकों का परिणाम है, हमारे मीडिया का परिणाम है, हमारे एलुमनाइज का सहयोग है कि बिहार के कोने कोने में हमारे विश्वविद्यालय को लोग जानते तो हैं। वहाँ वहाँ वहाँ अब पैन इंडिया से बच्चे और फैकल्टी आते हैं और मेडिकल में तो शुरू से ही नीट के थ्रू बच्चे आते ही हैं। हमारी मेडिकल की पहचान करीब करीब भारत भर में भी है और अन्य जो हमारे फैकल्टी हैं आज के प्रतियोगिता के इस युग में धीरे धीरे अपना एक जगह बना रहे हैं। और बिहार में हम लोग जितनी अपने क्वालिटी पर फोकस्ड है, हमारे चेयरमैन चांसलर गोपाल नारायण सिंह जी क्वालिटी के मामलों में जितनी उनमें जागरूकता है, दिल्ली में 25 साल के अपने करियर में मैंने वैसा कमिटमेंट नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी का 4 कॉलेज हैं, किसी के 10 व्यवसाय हैं, सब लोग वहाँ बड़े बड़े हाउसेज हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस क्लास के लोगों का एक साइड पोर्टफोलियो है, तो वो स्टेटस के लिए चलाते हैं। दे नेवर विजिट, वो कभी आते नहीं हैं, उनके लोग हैं आते हैं, पर इनका जो है सो आत्मिक लगाव है। 7 बजे सुबह वो 8 मतलब अपने घर से 7:30 तक निर्माण कार्य हो, शिक्षण कार्य हो, क्लास चल रहा है कि नहीं, चले आते हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद। मैं हूं राजेश और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम के रजिस्ट्रार कुमार आलोक प्रताप। बातें हो रही हैं, अगर टेक्निकल पढ़ाई करनी है खास करके बीएड स्पेशल एजुकेशन और भी बहुत सारे

0: कोर्स है, तो 9431899002 ये नंबर है, 1800121051 ये टोल फ्री नंबर है, और www.gnsu.ac.in ये हमारा वेबसाइट का पता है, इस पर जाकर आप जानकारियां ले सकते हैं। रजिस्ट्रार साहब, यहाँ पर हाँ लड़के और लड़कियों को रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन अगर देखें तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों से यूनिवर्सिटी के अंदर। ये यूनिवर्सिटी की कहानी कहती है कि यहाँ कितना सुरक्षित और कितना बेहतर माहौल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: वाकई देखिए, हमारा विश्वविद्यालय जो है उसका जो कैंपस है वह सासाराम और डिहरी, एक दो ट्विन सिटी के बीच में है। अब ये मतलब बहुत अच्छे शहर हैं और दोनों की दूरी करीब करीब 7-8 किलोमीटर है। अब देखिए इससे क्या फायदा है कि यह जो ग्रामीण परिवेश में विश्वविद्यालय है तो बच्चे ज़्यादातर शहर नहीं जा पाते हैं। रविवार के दिन सुरक्षित रूप से विश्वविद्यालय के बस जाती है, उससे अपनी खरीदारी वगैरह करने जाते हैं। आप एक चीज बताएं, ये गर्ल्स स्टूडेंट का तो अभी हम देखते हैं कि पूरे राष्ट्र में, मेरा तो बहुत लंबा 37 साल का करियर हो गया, सभी जगह बच्चियों का पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब हम विश्वविद्यालय नहीं थे गोपाल नारायण सिंह और केवल नारायण मेडिकल कॉलेज चलता था, तब भी मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की संख्या ज़्यादा थी। और अब क्या है, उस समय हम लोग बाहर टीचर को नहीं रख पाते थे, हमारे पास खुद फ्लैट भी कमी थी। युद्ध स्तर पर फ्लैट का निर्माण हुआ, आज के तारीख में हमारे पास शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो भी हैं।
0: आज की स्थिति में हाँ बहुत सारा समय निकल गया, बहुत सारी चीजें हुई और आपने बताया और मुझे भी पता है कि सबसे पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला था और धीरे धीरे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला गया, पूरा बिहार और झारखंड जी हाँ इस कार्यक्रम बुनियाद को सुन रहा है। सबसे पहले हाँ कुमार आलोक प्रताप जी, हम चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में, हाँ इसके दर्शन के बारे में है ना, अपनी वाणी से, अपनी आवाज से लोगों को परिचित करवाइए। सबसे पहले
1: भगवान की ईश्वरीय, मैं सौभाग्य कहूंगा कि मैं गोपाल नारायण सिंह जी को इस मामले में बहुत मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी एक यह जिद ही थी कि मैं कुछ भी करूंगा तो गांव में करूंगा, उसका मतलब असर हम देख रहे हैं इस इलाके में। और आज तो खैर हमारा विश्वविद्यालय हमारे कुछ मेहनत के परिणाम है, हमारे शुभचिंतकों का परिणाम है, हमारे मीडिया का परिणाम है, हमारे एलुमनाइज का सहयोग है कि बिहार के कोने कोने में हमारे विश्वविद्यालय को लोग जानते तो हैं। अब पैन इंडिया से बच्चे और फैकल्टी आते हैं और मेडिकल में तो शुरू से ही नीट के थ्रू बच्चे आते ही हैं। हमारी मेडिकल की पहचान करीब करीब भारत भर में भी है और अन्य जो हमारे फैकल्टी हैं आज के प्रतियोगिता के इस युग में धीरे धीरे अपना एक जगह बना रहे हैं। और बिहार में हम लोग जितनी अपने क्वालिटी पर फोकस्ड है, हमारे चेयरमैन चांसलर गोपाल नारायण सिंह जी क्वालिटी के मामलों में जितनी उनमें जागरूकता है, दिल्ली में 25 साल के अपने करियर में मैंने वैसा कमिटमेंट नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी का 4 कॉलेज हैं, किसी के 10 व्यवसाय हैं, सब लोग वहाँ बड़े बड़े हाउसेज हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस क्लास के लोगों का एक साइड पोर्टफोलियो है, तो वो स्टेटस के लिए चलाते हैं, दे नेवर विजिट, वो कभी आते नहीं हैं, उनके लोग हैं आते हैं, पर इनका जो है सो आत्मिक लगाव है। 7 बजे सुबह वो 8 मतलब अपने घर से 7:30 तक निर्माण कार्य हो, शिक्षण कार्य हो, क्लास चल रहा है कि नहीं, चले आते हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम के रजिस्ट्रार कुमार आलोक प्रताप, बातें हो रही हैं। अगर टेक्निकल पढ़ाई करनी है, खास करके बीएड स्पेशल एजुकेशन और भी बहुत सारे कोर्स हैं, तो 9431899002 ये नंबर है, 1800121005 ये टोल फ्री नंबर है, और www.gnsu.ac.in ये हमारा वेबसाइट का पता है, इस पर जाकर आप जानकारियां ले सकते हैं। रजिस्ट्रार साहब, यहाँ पर हाँ लड़के और लड़कियों को रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन अगर देखें तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों से यूनिवर्सिटी के अंदर। ये यूनिवर्सिटी की कहानी कहती है कि यहाँ कितना सुरक्षित और कितना बेहतर माहौल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: वाकई देखिए, हमारा विश्वविद्यालय जो है उसका जो कैंपस है वह सासाराम और डेहरी, एक दो ट्विन सिटी के बीच में है। अब ये मतलब बहुत अच्छे शहर हैं और दोनों की दूरी करीब करीब 7-8 किलोमीटर है। अब देखिए, इससे क्या फायदा है कि यह जो ग्रामीण परिवेश में विश्वविद्यालय है तो बच्चे ज़्यादातर शहर नहीं जा पाते हैं। रविवार के दिन सुरक्षित रूप से विश्वविद्यालय के बस जाती है, उससे अपनी खरीदारी वगैरह करने जाते हैं। आप एक चीज बताएं, ये गर्ल्स स्टूडेंट का तो अभी हम देखते हैं कि पूरे राष्ट्र में, मेरा तो बहुत लंबा 37 साल का करियर हो गया, सभी जगह बच्चियों का पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब हम विश्वविद्यालय नहीं थे गोपाल नारायण सिंह, और केवल नारायण मेडिकल कॉलेज चलता था, तब भी मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की संख्या ज़्यादा थी। और अब क्या है, उस समय हम लोग बाहर टीचर को नहीं रख पाते थे, हमारे पास खुद फ्लैट भी कमी थी। युद्ध स्तर पर फ्लैट का निर्माण हुआ, आज के तारीख में हमारे पास शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो भी हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, 2000 पूरे फ्लैट होने की वजह से सभी लोग यहाँ रहते हैं। और बच्चे भी हमारे जो आसपास के गांव के हैं, जो आसानी से विश्वविद्यालय में आ सकते हैं वही आते हैं, बाकी बाहर के जितने बच्चे हैं 5000 बच्चे करीब करीब सब के लिए छात्रावास उपलब्ध है। और कुछ छात्रावास जैसे हमारे नए जो डिपार्टमेंट खुले हैं, फैकल्टी खुले हैं, जैसे कि आपको रिहैबिलिटेशन साइंस या एलाइड हेल्थ साइंसेज या कुछ नर्सिंग में बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यह सब के लिए हम लोग और भी बहुत सारे 2-3 छात्रावास निर्माणाधीन है जिसमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और साथ साथ गांव के कुछ और लोगों ने भी अगल बगल कैंपस के छात्रावास का विकास कर लिया है, और उसमें छात्रावास भी नहीं रह छात्र ही नहीं, बहुत सारे कर्मचारी भी किराए पर कमरे लेके रहते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ हैं, वार्ड बॉय हैं, वार्ड आया है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो अगल बगल की अर्थव्यवस्था में एक एक, एक मतलब अनएक्सपेक्टेड उछाल आया है, और जमीन की भी कीमतें बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे भवन निर्माण का कार्य हो रहा है, और यह बहुत मतलब एक बदलाव है, यह सब विश्वविद्यालय की ही वजह से हो रहा है।
0: अच्छा चलिए, अब कोर्स पर आते हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आप रजिस्ट्रार साहब, आपसे 1-15 मिनट में तो बात हो नहीं सकती, तो हम वैसे बातों को शामिल करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपके यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स आया है, उस कोर्स के बारे में थोड़ा हमें बताइए, लोगों को बताइए।
1: अब देखिए, बीएड जो शुरू होगा वो बीएड बहुत ही रोजगार के दृष्टिकोण से स्पेशल होगा, रोजगार, क्योंकि आज हर स्कूल में ये टीचर स्पेशल मतलब स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों के लिए, या किसी तरह के जो आज मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ विकसित बच्चे नहीं हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक मतलब अति विशिष्ट, बहुत ही जटिल मतलब यह कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है, उसके लिए कुशल प्रशिक्षित शिक्षक ये 5-year इंटीग्रेटेड बीएड जो निकलेंगे, इंटीग्रेटेड बीएड की मैं, वो बहुत बड़ा योगदान देंगे। यह एक मानवीय जरूरत तो है ही, साथ साथ समाज का यह वर्ग, ये कोना जो कि जिसका कि रिड्रेसल करना बहुत आसान नहीं है, और वो उच्च शहरों में सब कुछ फैसिलिटी रहने के बावजूद भी उनको जाके वहाँ पर, चूंकि इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है, थेरेपी होती है, उनको

0: साल भर दो साल कोई नियमित रूप से दिल्ली या बॉम्बे या बेंगलोर कितना जा पाएगा। इसलिए यह हम लोगों की कोशिश है, हम लोग की शुरुआत है, हम लोग की बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है। हम टीचर लोग अपॉइंट कर रहे हैं, कल ही हमारे पास दो तीन एक्सपर्ट ज्वाइन किए, लगातार इंटरव्यू चल रहा है और हम बाहर से कोशिश कर रहे हैं हम इसके लिए और एक्सपर्ट लाएं और इसमें एक अपनी बिहार में एक अलग तरह की मतलब कार्य करें।
1: तो साथियों, अभी हमारे साथ बुनियाद कार्यक्रम में कुमार आलोक प्रताप थे, जानकारियां दे रहे थे, रजिस्ट्रार हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के। नंबर नोट करें 9431899002, 9431899002 और 1800121051 ये नंबर है। टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, राजेश चलते चलते यही कहेगा। आज के बुनियाद कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है, अगली मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम।

0: इसी के साथ कार्यक्रम एक रंग अभी समाप्त होता है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी।
1: मित्रों, बीमारियां अनेक तरह की होती हैं और जब शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं तो उन सारी बीमारियों को मिलाकर भी कुछ कुछ बीमारियां आपके अंदर अलग तरह से प्रवेश कर जाती हैं। आज हम ऐसे ही बीमारी के बारे में बात करेंगे, छाती में पानी भर जाना, जिसे हम कहते हैं कि लंग्स में पानी भर गया सामान्य भाषा में कहते हैं। तो छाती में पानी भर जाना का कारण क्या है, क्यों पानी कलेक्ट हो जाता है हमारे छाती में, और किन किन बातों का ध्यान रखें कि इस तरह की बीमारी नहीं हो, और ये छाती में पानी भर जाना का उपचार कैसे होता है, लक्षण क्या है, और अपने दैनिक जीवन में हम कौन कौन सी चीज़ों से सावधानियां रखें ताकि हम स्वस्थ रहें। बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजवीर सिंह। सिंह साहब स्वागत है। सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं कि छाती में पानी भर गया, क्या कारण है डॉक्टर साहब, कैसे समझें इसको?
2: देखिए, छाती में पानी भरने को हम लोग प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। देखिए, अगर आप एक पेशेंट हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, आपको छाती में भारीपन लग रहा है, आपको कंटिन्यूस बुखार आ रहा है और आपका वजन कम हो रहा है, तो बहुत कॉमन है कि आपको छाती में पानी भरने की बीमारी हो सकती है। इसको हम लोग प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। छाती में पानी हो सकता है कि आपके एक फेफड़े में भरे या दोनों फेफड़ों में भरे, कहीं भी पानी भर सकता है। तो जैसे ही आपको लगे कि ये सिम्टम्स है, आप तुरंत अपना इवैल्यूएशन कराएं। इसको डिटेक्ट करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, तुरंत आप अपने पास वाले डॉक्टर्स के पास जाएं, एक एक्सरे से हमें पता चल जाता है कि छाती में पानी भरा है कि नहीं भरा है। और अगर हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग रही है, तो हम एक सीटी स्कैन करा के भी देख सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, छाती में पानी भरने का जो प्रमुख कारण, जैसे आपने बताया लक्षण हो गया, क्यों पानी भर जाता है, क्यों पानी आ जाता है उसमें?
2: देखिए, छाती में पानी भरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपको हार्ट की दिक्कत है, लिवर की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, तो छाती में पानी भरना बहुत कॉमन होता है। अगर आपको कोई निमोनिया हो गया, अगर आपको टीबी के सिम्टम्स हैं, अगर आपको कैंसर हैं, तो ये सब बीमारियों में छाती में बहुत कॉमनली पानी भर जाता है। हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं? देखिए, अगर आपके छाती में पानी भर गया तो बिना पानी को निकाले और बिना पानी की जाँच किए ये बताना बहुत मुश्किल है कि पानी क्यों भरा। सबसे पहले अगर आपकी छाती में पानी भर गया तो हम एक सुई मार के पानी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम नहीं होती है। वो पानी निकालते हैं, फिर पानी की जांच होती है। मेनली जो पानी होते हैं दो टाइप से होते हैं, एक सादा पानी, एक एक्सुडेटिव पानी। जो सादा पानी होता है वो कॉमनली हार्ट की बीमारियाँ, किडनी की बीमारियाँ, लिवर की बीमारियों की वजह से हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें इंटरवेंशंस या पानी निकाल के कुछ प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाता है। पर सिमिलरली अगर यही बीमारियां एक्सुडेटिव एफ्यूजन की वजह से हो, मतलब इनका कारण टीबी भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो हर बीमारी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। अगर ये नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो 10 से 15 दिन की एंटीबायोटिक से पानी ठीक हो जाता है। और सिमिलरली अगर ये टीबी की बीमारी निकलती है तो 6 से 9 महीने तक इसका इलाज चलता है, लंबी दवाई चलती है, आपको रेगुलर

0: सिमिलरली पानी के रंग से हमको बहुत कुछ पता चल जाता है। अगर पानी लाल रंग का आ रहा है तो तुरंत हमें सतर्क हो जाना है। लाल रंग का पानी एक कैंसर की निशानी है, तुरंत हमें उस पानी की जांच करानी है। अगर उसमें कैंसर के लक्षण हैं तो तुरंत उसको हमें एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना है और आगे ट्रीटमेंट चालू करना है। बहुत बार हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि पानी भरा हुआ है, आप इलाज नहीं करा रहे हैं, दवाइयाँ चालू कर दी हैं, ठीक नहीं हो रहा है, फिर आप हमारे पास काफ़ी लेट आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कई बार ना वो पानी पस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पानी पस भर जाएगा तो काफ़ी दिक्कत की बात है। हमें बहुत बार इसमें एक छाती में एक ट्यूब भी डालनी पड़ जाती है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। वो ट्यूब डाल के फिर पानी निकाला जाता है, फिर उसके लिए हैवी एंटीबायोटिक्स चलती है, आपको भर्ती होना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि पेशेंट्स और बहुत लेट आते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल तक वो उसको इग्नोर करते हैं और हमारे पास आते हैं। ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि पानी अंदर जम जाता है, सीमेंट जैसे पानी जम जाता है। अगर पानी जम जाएगा तो नॉर्मल हम सुई से पानी को नहीं निकाल पाएंगे, और अगर हम नॉर्मल सुई से पानी को नहीं निकाल पाएंगे तो आप दिक्कत में हैं। फिर उसका समाधान यही है कि आपको छाती खोल के ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऑपरेशन थोड़ा लंबा और थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें हमें छाती खोलनी पड़ती है, इंटेंसिव प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग डिकॉर्टिकेशन के नाम से जानते हैं। तो जितनी जल्दी आप हमारे पास आएँ, ऐसे कोई सिम्टम्स है, जितनी जल्दी इलाज कराएं उतना आपके लिए बेटर होगा, उतनी जल्दी आप ठीक होंगे।
1: इसका इलाज बिल्कुल संभव है?
0: बिल्कुल इलाज संभव है।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी का ज़्यादा कारण हमारे जीवन शैली से तो जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे खान पान से तो नहीं इसका कुछ फ़र्क पड़ता है?
0: नहीं, देखिए, अगर आप कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, आपको हार्ट का इशू है, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको अगर कैंसर की बीमारी है, आप उसका इलाज करा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अगर आपकी हार्ट की दवाइयाँ प्रॉपरली नहीं खा रहे हो, हार्ट का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हार्ट और लंग्स की जो वेसल्स होती हैं वो आपस में क्रिएटेड हो जाती है। तो वो हार्ट जो हमारी बॉडी को पंप करता है प्रॉपरली पानी पंप नहीं कर पाएगा, उसका ब्लैक फ्लो हो जाएगा, वो लंग्स में जमा हो जाएगी। तो प्रॉपरली आपको इलाज कराना है, हार्ट की अगर बीमारी है प्रॉपरली उसकी दवाई खाते रहेंगे, और अगर आपको लेटने में सांस फूल रही है, बैठने में सांस फूल रही है, तो निश्चित यही है कि आपके छाती में पानी भर गया है, आप तुरंत उसका इलाज कराएं और नियरेस्ट डॉक्टर के पास।
1: इस तरह की बीमारी नहीं हो, लोग अमूमन घबरा जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है कि क्या हो गया। तो इस तरह की बीमारी नहीं हो, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए अपने दिनचर्या में, किन किन चीज़ों का खान पान में समावेश किया जाए, और अपनी दिनचर्या को कैसे हम व्यवस्थित रखें ताकि हम स्वस्थ रहें?
0: देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, हाइजीन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। खाना खाते हैं हाथ धो के खाएं, बारिश में मत भींगे, अपना ध्यान रखें। अगर आपको रेगुलर बुखार आ रहा है तो तुरंत हमारे पास आएँ। बेसिकली यही कंसर्न्स हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन है तो प्रॉपर दवाइयाँ खाइए, टाइम पे खाइए। अगर आपको चोट लग गई है, कोई आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, आप बाइक से गिर गए हैं, आप सीढ़ियों से गिर गए हैं, आपकी सांस फूल रही है, तो निश्चित ये भी कारण है पानी भरने का। पानी ऐसे भर जाता है कि बहुत बार हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं छाती में, तो जो हमारी छाती की हड्डियाँ होती हैं उसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, तो अगर आप सांस ले रहे हैं तो जो हड्डियाँ टूट गई हैं आपके लंग्स में स्ट्राइक करेंगी और ऑटोमेटिकली उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। वो फ्लूइड बेसिकली खून होता है, जिसको वो भी एक टाइप का प्लूरल एफ्यूजन ही हम कहेंगे। तो जो कोई भी अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है, आप तुरंत अपना ध्यान रखें और हमारे पास आके नियरेस्ट डॉक्टर को विजिट करें।
1: अभी अभी हम लोगों ने बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने को निकाला है, कोविड के दौर से हम लोग गुजरे हैं। ऐसे लोग जो कोविड के शिकार हो चुके हैं, जिनको कोविड हो चुका है, उनको किन किन बातों का ख्याल रखा जाए कि इस तरह की बीमारी नहीं हो उनको?
0: देखिए, कोविड पेशेंट्स में बेसिकली जो हम एक लॉन्ग कोविड एक बीमारी का आपने नाम सुना होगा, जिनको कोविड की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हो रही हैं, कुछ लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं, लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई है, लंग्स सिकुड़ गए हैं, ऐसे पेशेंट्स को ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि बॉडी में उनकी पहले से इम्यूनिटी कम है। कोविड वायरस की वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये लोग को बेसिकली वही करना है कि इन्फेक्टेड एरिया में ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, कोई ऐसी जगह जहां आपको लग रहा है कि साफ़ सुथरी नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है, वैसी जगह ना जाएं, प्रॉपर घर का खाना खाएं, बाहर का ज़्यादा खाना ना खाएं, बेसिकली यही ध्यान रखना है। और अगर कोई आपको सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं तुरंत कि खांसी बहुत टाइम से आ रही है, सांस फूल रही है, तो तुरंत अपने नियरेस्ट विशेषज्ञ को कंसल्ट करें।
1: वर्तमान वर्ष जो है वो मोटे अनाज का है, तो अपने खान पान में हम कौन कौन से अनाज का सेवन करें, कौन कौन से फलों का हम सेवन करें ताकि हम स्वस्थ रहें तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा?
0: देखिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता प्लूरल एफ्यूजन में कि आपको स्पेसिफिकली यही खाना है, ये फल आप नहीं खा सकते, वो नहीं।

0: बेसिकली ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिज़ीज़। अगर आपको पहले कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई हार्ट का इशू नहीं है, किडनी के इशू नहीं है, कभी आपको टीबी नहीं हुआ है, आपको कोविड नहीं हुआ है, तो आप बस नॉर्मल खाना खाएं, आप सब खा सकते हैं, बस साफ़ सुथरा खाना होना चाहिए। हाँ, सिमिलरली अगर आपको हार्ट की इशू है, किडनी की इशू है, तो आपको फैटी फूड नहीं खाना है, आपको नॉनवेज से थोड़ा बच के रहना है, खाने में थोड़ा नमक कम खाना है, फाइबर डाइट ज़्यादा खानी है, यही ध्यान रखना है। पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि पूरे फ्यूचर में हमें ये नहीं खाना है और ये खाना है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ज़रा टाइम से आपको दिक्कत है, तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाके आप विजिट करें। इस बीमारी को ज़्यादा देर तक आप
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 को होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में। सुनते हैं हिंदी में समाचार, 9:00 सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा। आज के फनकार हम अपने स्टूडियो से लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा रात्रि 10:00। तो आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार एन को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू

0: करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक मुतवाजिन और तिजारती लिहाज से मौसर तिजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तिजारती मुजाकरात में

0: के जरिए तामीर किया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक में इस्तेमाल होती है। इस एक्सप्रेसवे पर मस्नूई जहानत, एआई पर मबनी रफ्तार की निगरानी का निजाम, हर 2 किलोमीटर पर हंगामी कॉल बॉक्स और 24 घंटे काम करने वाले 2 मरबूत कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। ये शाहरा 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन की गई है और इस पर रवायती टोल बैरियर मौजूद नहीं है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के चंदे में मुबैना बेजाबतगियों में नामजद तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में मजीद 14 दिन की तौसीह कर दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज प्रतिभा नारायणन ने हुक्म दिया कि मुलजिमों को दोबारा 27 जुलाई को अदालत के सामने पेश किया जाए। खसूसी तहकीकती टीम SIT ने भी अपनी छानबीन शेयर करते हुए धर्म सेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। मुजवजा एक मुल्क एक इंतखाब फ्रेमवर्क के इम्कान पर गौर कर रही मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC ने आज लखनऊ में मुख्तलिफ शोबों के शराकत दारों और माहरीन से तबादला ख्याल किया। ये कमेटी मुल्कगीर मुशावरत के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, सिक्किम और मेघालय में भी कल शदीद बारिश हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का गुजर श्री गंगानगर, हिसार, मुरादाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बालूरघाट और फिर मणिपुर के मशरक जुनूब मशरक की जानिब जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कारेकल में कल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में गर्म मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने कल मतला जुजवी अब्र आलूद रहने और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कौमी राजधानी में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। नई दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: खवातीन क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से स्नेह राणा ने 4 विकेट जबकि सयाली सतघरे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने कल चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। जकार्ता में 19 साल और 23 साल तक की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 23 साल तक की उम्र के जुमरे में भारत के 8 मर्द और खवातीन मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह 7 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और कांसे का तमगा हासिल किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका एक मुतवाजिन और तजारती लिहाज से मौसर तजारती माहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तजारती मुजाकरात में तातुल से मुतालिक मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रवां माली बरस की पहली सहमाही में भारत की मौजूदा बरामदात 232 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11.37% ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन और दीगर 4 अफराद को साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मामले में मुजरिम करार दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है।

0: के जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर,
1: जिसे दुनिया चंदन टाकू के नाम से जानती है। और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो क्या चाहती हो?
2: मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे?
1: मांग कर देखो, 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख।
2: मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आज खिकोटे पर पैसा घुंघरुओं के झनकार के साथ बरसता है, जब चाहूं बटोर सकती हूं।
1: फिर क्या चाहिए?
2: इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप सब जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है। आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ घर दे सकते हैं, आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं।
1: तुम में किसी शरीफ का खून है, ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है। मैं वादा करता हूं, जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा, फिर झिझक उसके साथ चली जाना।
0: सन 1940 से सन 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहने वाले अभिनेता प्राण केवल सिकंद की गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीमारा में जन्म हुआ था प्राण का। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण को शिमला जाना पड़ा, जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण बने थे सीता, और प्राण ने सीता की भूमिका निभाई थी।
3: आज चाय भजिया कोर्स नहीं मिलेगा, आज दुकान बंद है।
4: हाँ, दुकान बंद है?
3: हाँ, किस खुशी में? तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश।
4: अरे मैं क्यों खुश भाई?
3: हमसे बनते हो? आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते, उससे खुशर पुशर बातें करते और पूछते मुझसे हो गए खुशी किस बात की।
4: किसने कहा तुझे ये सब?
3: एक काले कौए ने।
4: काले कौए ने?
3: हाँ, सुबह ही सुबह आया था। हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है।
4: साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे?
3: अरे बड़े खुश नसीब। अच्छा ये बताओ कि अब कब इंतजाम करूँ?
4: किस चीज का?
3: अरे पंडित का, मंडप का, ढोल तमाशे का, बाजे का, बारात का।
4: बस बस बस प्यारे भैया, यही तो तुम में एक कमजोरी है।
3: क्या?
4: आम पके नहीं कि सारे मोहल्ले को दावत दे दी।
3: अरे भैया जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी, एक बार मुझे उससे मिला दो
4: ताकि तू अपनी बड़बड़ शुरू कर दे।
3: अरे भाई तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुन सुन सुनो, गुस्से मत हो। अगर तुम बोलो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

0: जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोल।
1: लाहौर की हीरा मंडी में मौजूद एक दुकान पर संयोगवश प्राण की मुलाकात दल सुख पंचोली की यहाँ नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी।
2: कैदी नंबर 602
3: हाजिर है।
2: सर झुकाकर बात करो।
3: ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा।
2: बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं।
3: तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है।
2: लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए।
1: सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुईं, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

नजराना तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही

0: मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला।
1: मेरे बात करने का तरीका गलत था।
2: तरीका छोड़ो साहिब, बात गलत था। anyway, have a drink. कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा।
1: नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता।
2: पर हम तो 24 घंटा पीता है साहिब। आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू व्यक्ति। लेट्स गो, कोई मतलब का बात है? बोलो।
1: आप ही के मतलब की बात है मिस्टर बर्गेंद्र। मैं पूछने आया हूँ आपको कितना पैसा चाहिए।
2: हमको कितना पैसा चाहिए? क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं?
1: बिल्कुल ठीक सुना है आपने मिस्टर बर्गेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं, और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 30,000, 50,000।
2: पैसा का खिताब लेकर आया तुम? मैन तुम वेस्ट, यू वेस्ट मिस्टर नाथ। अभी बताता है तुमको, यू वेस्ट। देखो, लेकिन तुम बड़ा लोग के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। और हम छोटा लोग के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना उसको हम बेचता नहीं है। समझा तुम?
3: बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे, धंधा।
1: इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे?
0: फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई, और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गई।
4: तू सुना, कॉलेज का क्या हाल है?
5: ठीक ही है, पर तू कॉलेज के बारे में क्यों पूछने लगा?
4: वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना,
5: वो हितोपदेश पंचतंत्र में से
4: हो, कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई।
5: कौन सी?
4: वो गीदड़, बिल्ली और खरगोश की।
5: हाँ हाँ हाँ,
4: जब गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे।
5: हाँ हाँ, क्या बात है, दूसरे क्यों देख रहा? कहने का चाहता है
4: यही कि खरगोश अब भी संभल जा वरना फंस जाएगा। दो दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
0: करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किया है,

0: एक तरफ होते दिलीप कुमार, देव आनंद या राज कपूर हीरो के रूप में, और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण।
1: झूठ और झूठ का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोगों के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम गाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमदर्द गोलू गवाह, अरे गोलू गवाह AWD मतबल एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया?
2: आया सेठ रतिराम।
1: आओ सेठ रतिराम मलंग, हमें क्या करना होगा काम?
2: तलाक का है काम, बीवी पर बचलने का इल्जाम।
3: मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ, राम कसम मुझे बचा ले।
1: अरे सतनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं की।
3: गुल, ये 100 रुपया गवाही के एडवांस है।
1: सेठ अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम, अब इधर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम। चलो
2: एक नंबर का यहाँ से सेठ।
1: अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट।
4: गोलू भैया।
1: अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई?
4: सेठ रतिराम की बीवी हूँ, 3 बच्चे लेकर कहाँ जाओ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं।
1: ओ भाई ये हमें नहीं मालूम, हमारा तंदा गवाही देना, तू ज्यादा पैसे दे दे।
4: उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूँ।
1: यही तो मुसीबत है, ये ले फड़ अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसी की दूंगा।
0: हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रही।

0: फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई।
1: देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ।

0: प्राण जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे उन्हें महीने में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपए मिला करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रंग भी डाला। ये फिल्में थीं कश्मीर की गली, पूजा के फूल और हाफ टिकट।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूँ न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले आवरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: गुजरिया ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: प्राण अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे, खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं विविध भारती के प्रसारण सेवा आज के फनकार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी से बने रहे हमारे साथ, अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक मैं हूँ आपके साथ शालिनी। और इस सफ़र में यानी कि आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म तेरे नाम के इस गाने को।

श्रोताओं सुने फिल्म संगीतकार कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म तेरे नाम के इस गाने को अलका याग्निक की आवाज़ और उदित नारायण की आवाज़ में हिमेश रेशमिया के संगीत समीर के बोल। हम लौटते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

आपने सुना फिल्म में प्रेम रतन धन पायो के इस गाने को, अब आइए सुनते हैं शान की आवाज में हिमेश रेशमिया के संगीत इरशाद कामित के बोल थे। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन के संगीत साहिर लुधियानी के भी के बोल हैं। फिल्म का नाम है काला पत्थर।

अभी आपने सुना फिल्म साजन के गाने को, अलका याग्निक की आवाज़ में समीर के बोल, नदीम श्रवण के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम लौटते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

एक नज़र इस फिल्म के गाने को आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में, आर डी बर्मन के संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। फिल्म का नाम था यादों की बारात। और अब आइए सुनते हैं सागर फिल्म के गाने को किशोर कुमार की आवाज़ में। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल हैं, आर डी बर्मन के संगीत। फिल्म का नाम है सागर।

श्रोताओं आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इसी के साथ ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में।

0: वाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और

0: और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ अ डेडलॉक इन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, कॉलिंग देम एज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods, and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal, South 24 Parganas district. Social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. 15 fishermen went off for fishing from the Sankarpur Sea Harbour on 2nd of July on FB Ma Kali trawler. After 5th July, connection has been lost with the fishing trawler. A joint team of Coast Guard, Navy, state agencies found the capsized trawler on 12th July afternoon in the Bay of Bengal. 9 decomposed bodies have been recovered from the cabin of the ill-fated trawler. 6 persons are still missing. The mortal remains of the 15 Indian tourists who were killed in a speedboat accident in Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official X account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, today inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao. Later, they came back by the same expressway and participated in the function at Sainik School in Lucknow, where the projects worth 4,850 crore rupees were launched today, which includes inauguration of the expressway and 4-lane construction of a part of Lucknow-Hardoi Highway, along with the laying of foundation stone of a flyover in Lucknow. In cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one of women's test against host England at the Lord's. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lord's. Chasing a target of 457 runs, the hosts were all out for 186 in their second innings before lunch on day 4. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।